ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून सन 2026 सुबह के 5:57 होने को है। हमारी आज की सभा अब प्रारंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदी समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 3

0: 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमरीका से 3567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिघहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।

रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके चार मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काक भुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के सात कांड इस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है।

काव्य की ध्वनि, वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन, काव्य के नौ रस, जप, तप, योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस। स्वर थे अनूप जलोटा और साथियों की। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। सुविचार। पेड़ कभी शाखाओं की टूटने का दुख नहीं मनाते, क्योंकि उन्हें नए पत्तों के आने का भरोसा होता है। हर दिन नया अध्याय है। कल की गलतियों को आज की कहानी मत बनने दो। इस सुविचार के पश्चात आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म तेरे मेरे सपने से सुनिए गीत। इसे लिखा है नीरज ने।

कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से सुनिए गीत, जावेद अख्तर की बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुनिए, फिल्म यस बॉस से। इसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीतकार हैं जतिन ललित।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत।

हेलो हाय नमस्कार सुप्रभात। उम्मीद है आपकी सुबह एक नई ऊर्जा, नए उत्साह और नई उम्मीदों के साथ शुरू हुई होगी। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त निशिका बुराना और आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत, जहाँ हर सुबह होती है दिल की बातों के नाम और हर बात के साथ जुड़ता है एक खूबसूरत गीत। सुबह का समय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, बल्कि ये खुद से मिलने का सबसे अच्छा मौका होता है। जब दुनिया धीरे धीरे जाग रही होती है, तब हमारे सपने, हमारी उम्मीदें और हमारे लक्ष्य भी एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं। तो आज के इस एक घंटे में हम बात करेंगे ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों की, उन रिश्तों की जो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, और उन सपनों की जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और इन बातों के साथ ही सुनेंगे सुरीले गीत। तो मुस्कुराइए, चाय की पहली चुस्की लीजिए और अपने इस सफ़र की शुरुआत हम करते हैं शानदार गीत के साथ।

के पीछे भागने भागते भागते छोटी खुशियों को महसूस करना भूल जाते हैं, जबकि सच तो ये है कि जीवन की असली खुशी, असली खूबसूरती इन छोटी छोटी बातों में ही छिपी होती है। सुबह की ताज़ी हवा, परिवार के साथ बिताया गया एक पल, किसी अपने की मुस्कान या फिर किसी अनजान व्यक्ति की मदद करना, है ना? ये छोटी बातें ही तो हैं, लेकिन ये हमारे दिन को खास बनाती है।

देखिए, कभी कभी हमें रुक कर यह सोचना चाहिए कि हमारे पास जो है वो भी किसी का सपना हो सकता है ना? इसलिए हर सुबह की शुरुआत शिकायतों से नहीं बल्कि धन्यवाद से कीजिए। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा भाव है जो मन की शक्ति, मन को शांति देता है और जीवन में पॉजिटिविटी भर देता है। इसी खूबसूरत बात के साथ सुनते हैं अगला प्यारा सा गीत।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त निशिका। दोस्तों कहते हैं कि हर सुबह हमें एक नया मौका देती है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज का दिन पूरी तरह से नया है। अगर किसी काम में हार मिली है, अगर कोई अपना सपना अधूरा रह गया है या अगर किसी बात ने आपको निराश किया है, तो याद रखिए सूरज भी हर शाम ढलता है लेकिन अगली सुबह फिर से पूरी रोशनी के साथ लौटता है। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, हार और जीत दोनों इस सफ़र का हिस्सा है। ज़रूरी यह नहीं कि आप कितनी बार गिरे या कितनी बार हारे, बल्कि यह है कि आप कितनी बार उठकर आगे बढ़े। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, रिश्ते जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं। अक्सर हम अपने व्यस्त जीवन में उन्हीं लोगों को समय देना भूल जाते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। कभी माँ को बिना किसी कारण फ़ोन कर लीजिए, पिता के साथ कुछ पल बैठ जाइए या किसी पुराने दोस्तों को मैसेज भेज दीजिए। यकीन मानिए, रिश्तों की गर्माहट दौलत से भी ज़्यादा कीमती होती है। हम सभी अपने जीवन में प्यार, अपमान, सम्मान चाहते हैं। ये चीज़ें तभी मिलती हैं जब हम दूसरों को भी वही एहसास दिलाते हैं। आज अगर मौका मिले तो किसी अपने को यह ज़रूर बताना कि वह आपके लिए कितना खास है। इसी प्यारे से थॉट के साथ सुनते हैं अगला गीत।

तो दोस्तों, आज के कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस एक घंटे की हमारी मुलाकात ने आपकी सुबह को थोड़ा खुशनुमा बनाया होगा। याद रखिए, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, पर फिर भी खुश रहना हमारे हाथ में है। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहिए। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट निशिका बुराना, आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही सुबह में ठीक 7 बजे, कुछ नई बातें कुछ नए गीतों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले

0: करता था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: Partnership that we have with Nepal.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
7: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
6: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
8: मैं
9: पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य

0: होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीना।
1: केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान। इनमें

0: कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पांचवी पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
3: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।

0: अभिनंदन, स्वागत, सुप्रभात, नमस्कार। दोस्तों, हर दिन एक नई सुबह नई ऊर्जा लेकर आता है और ऐसी ही ऊर्जा आप सभी में भरने के लिए हम हाजिर हैं आप सभी का पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार लेकर।
1: जी दोस्तों, बिल्कुल इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू करवाएंगे कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ। और साथ ही रखेंगे आपको अपडेट, लेकिन उससे पहले हो जाए टीम का परिचय जो निर्बाध रूप से आप तक सभी प्रोग्राम्स पहुंचाती है।
0: ट्रांसमीटर पर हमारे साथ हैं सीएल सोनी और फारूक अहमद शेख।
1: कंट्रोल रूम से हमारा साथ दे रहे हैं प्रवीण कुमार।
0: अनाउंसर ऑन ड्यूटी एचपीटी पर उद्घोषिका निशिका बोराणा और एफएम पर नीतू।
1: और दोस्तों, इसी के साथ आपके होस्ट, दो होस्ट, मैं मनीषा बोहरा और मेरे साथ
0: मीता मुल्तानी। और नमस्कार कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश लामरोड। और साथियों, कार्यक्रम में बातें होंगी बहुत, लेकिन उससे पहले हम सुनाते हैं आपको गाने।

दोस्तों, व्यक्ति के विकास में, जीवन के निर्माण में, मुसीबतों का सामना करने में, अपने संबंध और खुशहाली को बरकरार रखने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो वह है

सकारात्मक सोच, बिल्कुल। प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि वे उठती हैं और गिर जाती हैं, बल्कि जब भी गिरती हैं नए जोश से फिर उठ जाती हैं। तो हम भी अपने जीवन को हमेशा सकारात्मक सोच से ओतप्रोत रखें, और अभी आपको हम खुशहाल बनाते हैं इस म्यूजिकल ट्रैक से।

0: जी दोस्तों, हमारी दादी नानियाँ हमें शुरू से ही, बचपन से ही कुछ ना कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से हमें प्रेरणा देने की कोशिश करती रही हैं कि हमारे जीवन को हम और बेहतर ढंग से जी पाएँ, जो कि हमारे जीवन के, हमें जीवन जीने के तरीके सिखाता है, हमारे लिए कुछ, हमारे बुद्धि के द्वार भी खोलता है कि हाँ, हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों में ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। तो ऐसे ही प्रेरक प्रसंग हम आपके लिए लेके आए हैं और हम आपको सुनवाते हैं दो बीजों की एक कहानी, जो हो सकता है आपके लिए भी जीवन में प्रेरणादायक हो। दोस्तों, एक उपजाऊ खेत में दो बीज साथ साथ गिरते हैं। ज़मीन में जब बीज पड़ते हैं तो पहला बीज बोलता है कि मैं बड़ा पेड़ बनना चाहता हूँ और मैं अपनी जड़ें धरती में फैलाऊंगा और सूरज की रोशनी लूंगा और फल फूल दूंगा। और ये कहकर वो मिट्टी के अंदर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो अंकुर बड़ा बन जाता है और फिर एक एक मजबूत पौधा बनकर बाहर निकलता है। दूसरा जो बीज धरती में गिरता है, वो सोचने लगता है कि अगर मैं मिट्टी में कीड़े हुए तो, अगर तेज बारिश आ गई तो, और अगर मैं नहीं बढ़ पाया तो क्या होगा। और इस डर के कारण वो वहीं पड़ा रहता है। कुछ दिनों बाद एक चिड़िया आती है और उस बीज को खा जाती है। समय बीतता है। पहला बीज, जो कि एक विशाल पेड़ बन गया था, वो लोगों को छाया, फल और शुद्ध हवा देने लगता है।
1: तो बिल्कुल दोस्तों, इस प्रेरक कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो लोग डर के कारण अवसरों का उपयोग नहीं करते, वे अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो साहस के साथ अपना पहला कदम उठाते हैं। तो आप भी मित्रों, आज छोटा कदम उठाइए, क्योंकि बड़े सपने भी छोटे प्रयासों से ही पूरे होते हैं। और अब सुनते हैं हम ये प्यारा सा गीत।

जी दोस्तों, जीवन में लोग इंतज़ार करते हैं अवसरों का कि वो अवसर आएगा तब हम अपनी प्रतिभा दिखाएंगे या हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, लेकिन जीवन में अवसर कभी आते नहीं हैं। हमें उन्हें बनाना पड़ता है, हमें निकालने पड़ते हैं, अवसर हमने चुनने पड़ते हैं सही समय पर। लोग ज़्यादातर सोचते हैं, देर करते हैं कि कल, ऐसा वादा करते हैं कि हम कल ऐसा कर लेंगे, लेकिन कल ही वो दिन है जब लक्ष्य खत्म हो जाता है। इसीलिए आज से ही शुरू करें, भले ही छोटा हो, भले ही गड़बड़ हो, बस शुरू करें, क्योंकि समय के साथ वो छोटे सुधार असली नतीजों में बदल जाते हैं।

0: जी दोस्तों, बारिश थोड़ी सी और आंधी तूफान आने से हम सोचते हैं कि हम डर जाते हैं कि तूफान आ गया, आंधी आ गई। लेकिन इसका अगर सकारात्मक पहलू देखें तो इससे हमारे टेम्परेचर में थोड़ी सी हमें राहत मिली है। तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का अगर को का को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमें उसके कुछ सकारात्मक पहलू भी मिलते हैं। और अगर हम इन्हीं को विचारों की में देखें तो हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, और जिस तरह कहते हैं ना कि प्रकृति भी कितनी विचित्र है, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, ये जो अलग-अलग मौसम है ना, इसके भी अपने अलग-अलग कुछ न कुछ पहलू हैं। और मित्रों, जब बारिश और धूप दोनों मिल जाते हैं ना, तो बड़ा ही सुंदर इंद्रधनुष बनता है। और इसलिए खूबसूरत जितनी जिंदगी जो हमारी है, जैसे इंद्रधनुष बहुत ही देखने में सुंदर लगता है, उसी तरह जो खूबसूरत जिंदगी है, उसके लिए भी बारिश और धूप की तरह सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। तो जिंदगी में सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन प्रकृति के साथ हम अपने इस जिंदगी के पहिए को चलाते रहेंगे तो नए खट्टे मीठे अनुभवों के साथ जिंदगी आगे बढ़ती ही जाएगी।

0: तो दोस्तों 9 बजने वाले हैं। अब हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जो आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया, कहा राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून की। और खेत बचाओ अभियान से देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान जुड़े। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की बढ़ोतरी दर्ज की है। श्री मोदी ने दमन में कल शाम लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि देश गरीबों के लिए व्यापक अवसंरचना विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधार की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया और कहा कि भारत हरित भविष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। वे आज भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पानी और बिजली की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार की विभिन्न योजनाओं का हर व्यक्ति को फायदा मिल रहा है।
2: हमारा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर फोकस है, उसे लेकर के हमारी ग्राम चौपालें लगातार चल रही हैं। अभी गांव वालों के साथ यहाँ के बिजली की, पानी की, खेती की, क्यारी की, यहाँ और क्या हो सकता है उसके लिए लगातार हम बात कर रहे हैं। गांव की यहाँ पैदावार होती है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी तो मेरे गाँव के नौजवान को यहाँ रोजगार मिलेगा। हम सरकार रोजगार देना चाह रही है, हम प्राइवेट स्तर पर भी देना चाह रहे हैं और वो निजी अपना कोई कारोबार प्रारंभ करें, इसके लिए भी

0: सरकार लगातार काम कर रही है। निश्चित रूप से आज मैं इस खारी का लांबा गांव में हूं। ये बहुत अच्छा गांव है। निश्चित रूप से हमारी सरकार का और डबल इंजन की सरकार का हर व्यक्ति को फायदा मिल रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने गांव में मॉर्निंग वॉक और धर्मी तालाब के पास योगासन किया। इससे पहले कल रात उन्होंने ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने खारी का लांबा ग्राम पंचायत में नया कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय खोलने और कृषि पर्यवेक्षक का नया पद सृजित करने की घोषणा की। साथ ही विद्यार्थियों की मांग पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान संकाय खोले जाने का भी आश्वासन दिया। जयपुर में इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो लगाया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिन के इस फूड एक्सपो का कल शुभारंभ किया। ये एक्सपो राजस्थान उद्योग व्यापार महासंघ की ओर से लगाया गया है। एक्सपो का उद्देश्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों, निर्माताओं, डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक मंच उपलब्ध कराना है, जिससे व्यवसाय विस्तार के साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो सके। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉ बैरवा ने कहा कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से फूड इंडस्ट्री, कृषि उत्पादों और के संवर्धन, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: हमारे व्यापारियों के द्वारा फूड एक्सपो का यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, अपने स्टॉल लगाई है और एक छत के नीचे हर प्रकार की ब्रांड, हर प्रकार की चीजों की यहाँ प्रदर्शनी लगाकर निश्चित रूप से व्यापार जगत को एक छत के नीचे लेकर जो ये एक नवाचार किया है, इससे व्यापार बढ़ेगा। इससे हर व्यक्ति, हर ग्राहक और हर व्यापारी एक दूसरे से मिलकर हो सकता है और बहुत बड़ा उद्योग मिल सकता है, व्यापार बढ़ सकता है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देशभर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। भारत पाक सरहद पर स्थित जैसलमेर जिले में सुरक्षा कारणों से पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
3: इसमें सीमावर्ती क्षेत्र की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय से प्रतिवर्ष 163 का ये ऑर्डर निकलता है, जिसमें कि ये प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी एक चुनौती जो जैसलमेर जिले की सीमा पर हम पाई जाती है वो यही है कि जो पाकिस्तानी सिम है वो यहाँ 3-4 किलोमीटर तक उसका वो फंक्शनल रहता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमने गृह मंत्री महोदय की जानकारी में भी हम लोग लेके आए थे। रूटीन के साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा एक हमारी सालाना एक एक्सरसाइज रहती है, जिसके तहत फिर हम लोग पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसमें कार्रवाई भी।
1: राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नवाचारों के लिए आमंत्रण मांगे हैं। विभाग के सचिव डॉ. आरुषि मलिक ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समस्याओं के

0: प्रभावी समाधान, आजीविका बढ़ाने, सतत विकास तथा समाज के कल्याण में योगदान देने वाले नवाचारों को पहचान प्रदान करना और उन्हें व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करना है। विभाग ने ऐसे नव प्रवर्तकों, किसानों, विद्यार्थियों, स्टार्टअप, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सामुदायिक संगठनों से अपने नवाचार प्रस्तुत करने को कहा है। इच्छुक प्रतिभागी अपने नवाचार का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश के मौसम में आए बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। भीलवाड़ा में कल दिन का पारा 8 डिग्री सेल्सियस गिर गया। वहीं जयपुर में 7.2, कोटा में 6.6, अजमेर में 6 और सीकर में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। रात का पारा भी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इस नए मौसम तंत्र का असर अगले 2 दिन जारी रहने की संभावना है। इस दौरान आंधी चलने और बरसात होने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया, कहा राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून की और खेत बचाओ अभियान से देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान जुड़े। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद आपका पुनः स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। आज इस कार्यक्रम में हम आपके दो साथी मीता मुल्तानी
2: और मैं मनीषा बोहरा। और दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और सुनवाते हैं आपको गीत।

0: कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा।
1: श्रोताओं, अब हम आपको एक भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं जिसमें डॉक्टर अंजू नागर, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जोधपुर से बातचीत की है संजय व्यास ने, और विषय है आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है और इसमें संयोजन किया है राजेश लामरोड़ ने।
2: मित्रों, हम सबका ध्येय स्वस्थ रहना और आयुष्मान बनना है और हमारे इसी ध्येय को पूरा करने की कोशिश करती है सरकारें, हमारी सरकारें। हम खुद ही सरकार है और सरकार हमसे ही है, तो सरकार हमें स्वस्थ और आयुष्मान बनाने के लिए योजनाएं बनाती हैं, कार्यक्रम लागू करती हैं। और इसी कड़ी में 2025-26 के बजट में राजस्थान सरकार ने घोषणा की है आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। ये पूरा का पूरा गांव जो है वो आयुष्मान बनाने के लिए, यानी आयुष्मान बनेगा और आदर्श बनेगा। तो इस योजना के मुख्य बिंदु क्या हैं और आयुर्वेद विभाग इसमें क्या भूमिका अदा कर रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है अंजू नागर, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जोधपुर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
3: थैंक यू।
2: ये सबसे पहले योजना के बारे में हम दोस्तों को बताना चाहेंगे, श्रोताओं को, आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना क्या है, इसके मुख्य बिंदु।
3: इसके मुख्य बिंदु जो मेन, पहले इसका उद्देश्य मैं बता देती हूँ। इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव को स्वस्थ रखना, निरोग रखना, जिससे वो आयुष्मान बन सके। ये राजस्थान सरकार की ये पॉलिसी है जिसपे जितने भी आयुर्वेद में आर्म सेंटर है, जैसे जोधपुर में 67 आर्म सेंटर है, तो ये फर्स्ट फेज अभी लागू किया गवर्नमेंट ने। उसमें 67 में से 5 आयुष्मान आरोग्य सेंटर है हमारे, जिसको आर्म सेंटर कहते हैं शॉर्ट में, उनको लिया गया है। उस पर जो गवर्नमेंट की ये स्कीम है उसमें 18 पॉइंट है हमारे, जिसमें कि 100% प्रकृति परीक्षण होना चाहिए, उसके बाद तम्बाकू मुक्त होना चाहिए, उच्च रक्तचाप की जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए, मधुमेह की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, किशोरियों में रक्त की कमी की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, 100% जो है संस्थागत प्रसव होने चाहिए। इस तरह से 18 पॉइंट जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, इन 18 पॉइंटों पे काम करके उस गांव को स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना, जिससे कि अपन एक आदर्श ग्राम की योजना लागू कर सकें, ऐसा गवर्नमेंट का ध्येय है। और इस पे आयुर्वेद डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जिसमें कि अभी आरोग्य सखी, आरोग्य मित्र आदि का निर्माण भी किया है, प्रत्येक वार्ड से 5-5 का। उन बच्चियों को या जो मित्र हैं या सखी हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद वो बीपी और डायबिटीज आदि का हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और उनको सिखाते हैं, सिखाने के बाद फिर उनसे काम लेते हैं। इस तरह से हम लोग ये मिलकर सब काम कर रहे हैं
2: जी। यानी जो हम लोग पाते हैं कि आमतौर पर हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के, संस्थागत प्रसव एक समस्या है, महिलाओं में खून की कमी या आयरन की कमी एक समस्या है, या फिर जो मिडिल एज में लोग हैं उनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या है, ये जो समस्याएं हैं इनको लेकर के और आरोग्य आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है। और उस ग्राम में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपने बताया कि पूर्णतः ये तम्बाकू मुक्त होगा
3: जी।
2: तो कुछ इसमें बिंदु ऐसे हैं जो चुनौतियों के रूप में सामने आते हैं, जैसे कि तम्बाकू मुक्त करना, ये क्या वाकई बहुत बड़ी चुनौती है? क्योंकि गांवों में हमने देखा है कि अलग अलग रूपों में तम्बाकू का सेवन किया जाता है और तम्बाकू छुड़वाने के लिए कोशिशें जो होती है उनके बहुत ज्यादा सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आते हैं, वापस उस आदत को पकड़ लिया जाता है जब तक कि इसका फॉलोअप नहीं होता है। ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर किस तरह से ध्यान दिया जाएगा और आयुर्वेद इसमें क्या मदद कर सकता है तम्बाकू छुड़वाने में?
3: इसके लिए हम लोग मोटिवेशनल रैलियां निकालते हैं, हम लोग नाइट चौपाल में जो है लोगों को समझाते हैं कि आपको तम्बाकू नहीं लेना है, और जो बहुत ज्यादा तम्बाकू खाते हैं वह हमारे डॉक्टर्स उनसे मिलते हैं, उनको समझाते हैं, उनके साइड इफेक्ट बताते हैं कि भाई इसको आप खाओगे तो इससे आपको ये हो सकता है। कुछ फोटोज उनको दिखाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा तम्बाकू खा रहे तो ओरल कैंसर के फोटोज दिखाएंगे, तो उनको एक तरह से डराते भी हैं, समझाते भी हैं। और इस तरह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आरोग्य मित्र हैं या सखी हैं, वो सब काम करते हैं और वो स्क्रीनिंग कर करके लाते हैं घर से कि इस घर में बहुत ज्यादा तम्बाकू खा रहे हैं या फिर पान पर आ गया, कुछ भी जो भी ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो सब चीजें फिर हम लोग रैली निकाल के उनको सबको समझाते हैं, हॉस्पिटल्स में बुलाते हैं, उनकी पूरी एक सभा कराते हैं, उसके बाद समझाने के बाद, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लोग वाकई

0: कह रहे हैं कि हम तंबाकू नहीं खाएंगे।
1: सभी लोग इससे खास तौर पर प्रभावित होते हैं, और तंबाकू के अलावा जो दूसरे व्यसन है उसमें तो परिवार के लोग खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे
0: बिल्कुल
1: के मामले में हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत प्रभावित होती हैं,
0: जी सर,
1: और जब भी शराब छुड़वाने की बात आती है तो महिलाएं इसमें सक्रिय भूमिका अदा करती हैं। इसी तरह से तंबाकू के मामले में भी परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो अगर अपनी एक भूमिका निभाएं तो इसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना है, वो किस प्रकार इस आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जुड़ी हुई है?
0: इसमें क्या होता है कि एक जैसे जोधपुर में 5 गांव लिए हैं, जिसमें मोगरा कला है, हिंगोला है, कैरू है, जोलिया लिए है, हरियाणा ढाका है, ये 5। ये जो आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना में जो 5 आम सेंटर्स को लिया है, इस आम सेंटर में पूरा वही थीम है कि किस तरह से अपने को जाना, शत प्रतिशत टीकाकरण होना चाहिए। मतलब मूल इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उनको बताया जाए, और वो चीजें जो है बाहर से नहीं लानी अपने को, कहीं से भी गांव में जो आपके पास साधन उपलब्ध है। अगर आपके गांव में आंवला होता है तो विटामिन सी के लिए आप कीवी मत खाइए, आपको कीवी उतना फायदा नहीं करेगी जितना वो आंवला फायदा करेगा। इसलिए उनको ये समझाया जाता है, और वन विभाग का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है कि यहाँ के एटमोस्फेयर में जो पौधे उगेंगे या जिस तरह से कैसे कैसे पौधे हैं जिनको अपन उगाया जाए, और उनको समझाया जाए कि आपको इसको इस तरह से यूज में लेना है या आपको इसको ऐसे खाना है, वो सब बता के अपन वहां पे उपलब्ध संसाधनों से भी व्यक्तियों को स्वस्थ रख सकते हैं अपन।
1: ये योजना अपने स्कोप में काफ़ी बड़ी है और आयुर्वेद विभाग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर ही
0: जी
1: रहा है,
0: सर,
1: लेकिन चूंकि ये योजना है इसके बहुत सारे दूसरे पहलू भी हैं, तो क्या अन्य विभाग भी इसमें जोड़े गए हैं और उनकी भी उतनी ही सक्रिय भूमिका इसमें रखी गई है?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, अन्य विभाग भी इसमें लिए गए हैं, जैसे चिकित्सा विभाग को भी लिया गया है। कोई संस्थागत पैसा जो है 95% तक संस्थागत होने चाहिए, तो उसमें हमने चिकित्सा डिपार्टमेंट से भी लिया है। जैसे पौधे हैं उनके लिए वन विभाग से भी लिया गया, पंचायती राज विभाग को भी हमने इसमें शामिल किया है। ऐसे इस तरह से 9 डिपार्टमेंट है जिनको इसमें शामिल किया है, उन्हीं के सबके सहयोग से इसको अपन सक्षम बना सकते हैं।
1: जी, 5 गांवों का चयन इसमें आपने कहा कि
0: जी सर,
1: जोधपुर से किया गया है। अगर कोई और गांव इसमें वॉलंटियर करके आना चाहे कि हम भी इस योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या वो आ सकते हैं?
0: अभी तो नहीं आ सकते क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि फर्स्ट फेज में सिर्फ 5 गांवों का, और वो हमने डिसाइड किया कि 5 कौन से लेने, जहां पर पूरा स्टाफ है और जहां पर हमें लगता है कि यहाँ अच्छा सा काम कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हमने उन्हीं को लिया है। सेकंड फेज जब स्टार्ट होगा उसमें वापस 12 नाम और हमसे मांगे, तो वो भी हमने दिए हैं। धीरे धीरे धीरे धीरे सारे आम सेंटर पे स्कीम स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अब इनिशियली बेस पे इसको 5 पे स्टार्ट किया हम लोगों
1: तो
0: ने।
1: इस योजना को सक्सेसफुल बनाने के लिए आयुर्वेद विभाग किस प्रकार से लोगों तक पहुंच रहा है? जैसे ग्रामवासी हैं, उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करनी है, उनके पैरामीटर्स ठीक हैं या नहीं है, इस पर मॉनिटरिंग करने के लिए, इसकी जांच के लिए क्या आप स्वयं व्यक्तियों के पास जाते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि आप जांचें करवाइए?
0: हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो आरोग्य मित्र आरोग्य सखी हैं, वो गांव में जाते हैं, पूरा देखते हैं। ANM है जहाँ आम सेंटर पर ANM भी काम करती है, वो पूरे गांव में एक एक परिवार से मिलते हैं, फिर वहां से वो स्क्रीनिंग करके लाती हैं कि इस परिवार में इतने डायबिटीज के पेशेंट हैं, इतने इसमें BP के पेशेंट हैं, वो सब करके लाती हैं। उन लोगों को फिर हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, अगर माइल्ड स्टेज है तो उनका ट्रीटमेंट वही आम सेंटर पर किया जाता है, और लगता है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो उसको रेफर भी किया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो स्टाफ है काम कर रहा है।
1: मैम, जो स्वास्थ्य है ये इस पे सबका हक है और ये
0: जी
1: ऐसी पूंजी है जिसे हम बहुत ज्यादा खर्च या इन्वेस्ट किए बिना प्राप्त कर सकते हैं। तो आयुर्वेद हमारा इसी तरह का विज्ञान है जो आपको आरोग्य प्रदान करता है। जो इस योजना में शामिल हैं या नहीं हैं, उन सब के लिए एक स्वस्थ और आरोग्य पूर्वक जीवन के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं सलाह देना चाहूंगी कि सबसे पहले जो अपनी दिनचर्या है वो एकदम ठीक रखें, जो भी आयुर्वेद में बताया। जैसे आयुर्वेद में सबसे पहले डिजीज की कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं दिखाया कि ये व्याधि हो गई तो इसका इलाज करो। सबसे पहले आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य का अपन कैसे रक्षा कर सकते हैं, वो सबसे पहले बताएं। जो भी दिनचर्या है अपनी उसको पहले बिल्कुल मेंटेन रखें, तो आदमी बीमार होगा ही नहीं और उसको किसी भी तरह के इलाज की जरूरत नहीं है, मैं कहना
1: मोटे
0: चाहूंगी।
1: तौर पर आयुर्वेद में दिनचर्या और जो आहार का है उसके बारे
0: बिल्कुल
1: में क्या कहा गया है? किस तरह का आहार आपका होना चाहिए? क्या ऋतु के अनुसार आहार परिवर्तित होना चाहिए?
0: जी बिल्कुल, ऋतु के अनुसार ही होना चाहिए आहार। 6 ऋतुएं बताई गई हैं आयुर्वेद में, उनके अकॉर्डिंगली अगर आप करोगे खान पान अपना रखोगे, आहार विहार रखोगे, तो आप कभी बीमार नहीं रहेंगे।

0: जो हमारे परंपरा में आहार लिए जाते हैं ऋतु के अनुसार बदलते भी हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि सर्दियों में दही का सेवन उतना न करें, गर्मियां आने पर आप दही का सेवन कर सकते हैं, तो वो मोटा मोटी तौर पर क्या आयुर्वेद के अनुसार ही है जो हमारी परंपराओं में
1: एक्चुअली में
0: आहार
1: सर
0: चलते हैं?
1: ये है कि गर्मियां हैं तो दही खाइए, सर्दियां हैं तो दही नहीं खाना है, ऐसा लोग आम लोग कहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, गर्मियों में दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है।
0: अच्छा।
1: आपको छाछ पीनी चाहिए, जिसको आयुर्वेद में तक्र बोला है, और उसका बनाने का तरीका भी अलग बताया।
0: जी
1: सर्दियों में जो लोग दही बंद कर देते हैं, जबकि सर्दियों में दही खाना चाहिए क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: उसकी तासीर गर्म होती है।
0: तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि आयुर्वेद के अनुसार कौन से खाद्य पदार्थ जो हैं वो अनुमत है और कौन से नहीं है, ये
1: नहीं
0: थोड़ा
1: है,
0: सा आपको पता कर लेना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: इस योजना के बारे में कुछ और आप बताना चाहेंगे?
1: इस योजना के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि अगर ये 5 ग्राम जो हमारे चिन्हित है, अगर उस पर सक्सेस होती है, तो आगे पूरे राजस्थान में हम लोग इसको करने वाले हैं। इसके साथ ये है कि इस योजना को लागू करने से कहीं ना कहीं अपन एलोपैथी के लोड को कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी बीमारियां, बाइलर डिजीज है आपको, या आपको खांसी हो गई, जुकाम हो गए, तो आप अपनी रसोई से भी इसका इलाज कर सकते हैं। रसोई से लेके आपको कहाँ जाना है, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, फिर अगर वहां से आप ठीक नहीं होते तो आप जाइए एलोपैथी डिस्पेंसरी। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि अपन इस एलोपैथी के लोड को, अगर ये योजना चालू होती है, तो अपन कम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और जो 5 गांव चयनित हुए हैं उनको आयुष्मान आदर्श ग्राम बनाने की जो योजना है, इसकी टाइमलाइन है वो क्या है?
1: टाइमलाइन तो सर 1 साल का ये है इसमें, वो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा जी जान से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि उस गांव को 100% हम लोग स्वस्थ कर दें। 100% नहीं तो कम से कम जो 18 इंडिकेटर्स हैं अपन उसको अपन फॉलो करके अपन उसमें खरे उतर सकते हैं।
0: जो गांव इसके लिए विशेष प्रयास करते हैं और बहुत उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, गांव और गांव वाले जो हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई इंसेंटिव या कोई प्रोत्साहन राशि या प्रोत्साहन पुरस्कार जैसा कुछ है?
1: जो गांव इन 18 पॉइंट को अपना पूरा फुलफिल करता है, उनके लिए सरकार 11 लाख रुपए एज ए प्रोत्साहन राशि
0: जी।
1: प्रदान
0: और
1: करेगी।
0: वो 11 लाख रुपए आपको फिर से स्वास्थ्य में ही खर्च करने हैं या गांव अपने विकास के लिए भी खर्च कर
1: अपने
0: सकता है?
1: विकास के लिए भी सर कर सकते हैं, और जो भी ग्राम पंचायत को दी जाएगी वो अपने उत्थान के लिए उसको खर्च कर सकती है।
0: बिल्कुल। अंजू नागर मैम, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जोधपुर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के बारे में आपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, अभी अभी आपने एक भेंटवार्ता सुनी डॉक्टर अंजू नागर, डेप्यूटी डायरेक्टर आयुर्वेद डिपार्टमेंट जोधपुर से। भेंटकर्ता थे संजय व्यास, और प्रस्तुति और संयोजन था राजेश लामरोड का, और इसका विषय था आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको गीत।

0: श्रोताओं, आज है 6 जून और 6 जून के दिन देश और दुनिया के इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जानते हैं क्या है आज के दिन का इतिहास? साल 1674 मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में भव्य राज्याभिषेक हुआ था आज ही के दिन, और उन्हें छत्रपति की उपाधि से इसी दिन नवाजा गया था। छह जून 1944 को डी डे के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेना, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने नाजी जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस को मुक्त कराने के लिए उत्तरी फ्रांस के नॉर्मेंडी समुद्र तट पर आक्रमण किया था। यह इतिहास का सबसे बड़ा नौसैनिक और हवाई आक्रमण माना जाता है। साल था 1984 और दिन था आज का, यानी 6 जून को ही भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर को चरमपंथियों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार आज ही के दिन समाप्त हुआ था। वर्ष 1997 में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड ने मिलकर बैंकॉक में बिस्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया था आज ही के दिन। और इसी के साथ ही आज है शनिवार, तो श्रोताओं, हम आपको लिए चलते हैं आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट में, जिसमें हम सुनवाते हैं स्पेशल रेसिपी आपको।
1: जी दोस्तों, आज के शनिवार स्पेशल रेसिपी में है मैंगो बाइट्स। क्योंकि आम का सीज़न चल रहा है, तो क्यों ना ऐसी ही रेसिपी बताई जाए जो सीज़न के अनुकूल हो। तो आम अभी सभी घरों में आराम से

0: उपलब्ध रहते हैं। तो दोस्तों हम ये सामग्री आपको पहले सबसे पहले नोट करवा देते हैं कि मैंगो बाइट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिएगी सामग्री के तौर पर। सबसे पहले पके आम का पल्प 1 कप, नारियल का बुरादा 2 कप, कंडेंस्ड मिल्क 1/2 कप, आप बाज़ार से ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे घर पर भी बना सकते हैं, हम आपको इसका भी तरीका बताएंगे। 1 चम्मच इलायची पाउडर और बारीक कटे पिस्ता और बादाम गार्निशिंग के लिए। अब दोस्तों इसकी विधि की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप कढ़ाई लेंगे, अगर नॉन स्टिक हो तो बेहतर है, उसमें 1 छोटा चम्मच घी डालकर आप उसमें नारियल का बुरादा डालकर उसे भुनेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए भुनना है उसे, उसका कलर चेंज नहीं करना है हमें, सिर्फ खुशबू आनी चाहिए और वो हल्का सा उसमें घी का एक ऐड हो जाना चाहिए टेस्ट। फिर उसके बाद में हम आम का पल्प डालकर उसे हिलाएंगे 2 मिनट तक 3 मिनट तक इसे भी पकाएंगे। उसके बाद में कंडेंस्ड मिल्क और इलायची पाउडर डालकर धीमी आंच पर थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक कि वो जो मिश्रण है वो गाढ़ा होकर कढ़ाई से किनारे छोड़ न दे। उसके बाद में गैस बंद कर देंगे और मिश्रण को प्लेट में निकाल कर थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हथेलियों पर घी लगाएंगे। हथेलियों पर घी लगाने से हमें इसके बाइट्स बनाने में, लड्डू बनाने में आसानी रहती है। तो हम हथेलियों पर घी लगाकर लड्डू बनाएंगे और फिर अंत में सूखे नारियल के बुरादे में उसे थोड़ा रोल कर देंगे ताकि उसके ऊपर एक पतली परत चढ़ जाए सूखे नारियल की, और फिर उसके ऊपर ड्राई फ्रूट गार्निश करेंगे। तो ये बन के तैयार है आपके मैंगो बाइट्स। दोस्तों जो होती है इलायची इसमें पड़ती है, मैंगो है और नारियल का बुरादा है, ये मौसम के अनुकूल है। नारियल हमें हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है और आम तो है ही हमारे सेहत के लिए, तो ये एक अच्छी सेहतफुल रेसिपी है। ज़्यादा शक्कर का हमने इसमें कोई ऐसा यूज़ नहीं किया है, सिर्फ जो आप कंडेंस्ड मिल्क यूज़ लेंगे वो थोड़ा सा मीठा होगा और मैंगो तो होता ही है मीठा। कंडेंस्ड मिल्क बनाने का भी हम आपको घर पर तरीका बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बाज़ार में महंगा मिलता है तो आप इसे घर पर बना सकते हैं। अगर आपने 1 किलो दूध लिया है तो आपको 1 किलो दूध को गैस पर चढ़ा कर उसमें उसको 1/4 होने तक आपको उसको पकाना है, दूध को गाढ़ा होना है, तो उसके हिसाब से आप उसमें शक्कर डाल दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर आप उसमें 1 पिंच या 2 पिंच आप उसमें मीठा सोडा डाल दीजिए। जब आप उसमें डालेंगे तो उसका वो धीरे धीरे जल्दी से वो 1/4 पर आ जाएगा दूध गाढ़ा होकर, कम टाइम लगेगा और उसके साथ ही उसका थोड़ा सा टेक्सचर चेंज हो जाएगा और उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है वो बढ़ जाएगी। उसे आप स्टोर ठंडा करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा मीठा सोडा डालने से। तो ये कंडेंस्ड मिल्क की भी रेसिपी हमने आपको बताई, अब आप घर पे आराम से बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए।
1: तो इस मैंगो बाइट के खट्टे मीठे स्वाद के साथ ही हम सुनते हैं फिल्म खट्टा मीठा का ये सॉन्ग।

0: श्रोताओं, अब हम आपको बताते हैं एक खास बात। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन कप में धावक गुरिंदर वीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.09 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने अनिमेश कुजूर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा और 10.10 सेकंड का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।
1: और दोस्तों, इसी के साथ खास बात में एक और बात कर लेते हैं। दोस्तों, भारत विकासशील देश से विकसित देश बनने की ओर निरंतर प्रयासरत है, अग्रसर है, और इसीलिए हम आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। और इसी दिशा में हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी ने एक और प्रयास किया है और हाल ही में एक भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक को मजबूती देने की दिशा में जोधपुर में आत्मघाती ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों, ये मानव रहित यान है, यानी UAV, इसका परीक्षण जो किया गया था और जोधपुर में ही किया गया था, हमारी ये खास बात है। और दोस्तों, इसकी अगर रेंज की बात करें तो ये 500 किलोमीटर तक की रेंज रखता है और ये लगातार 5 घंटे तक हवा में रह सकता है। और इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर, कम्युनिकेशन रिले सिस्टम और मिशन के अनुसार विभिन्न प्रकार के वारहेड लगाए जा सकते हैं, जो इसे और मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, ये जो UAV है वो निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, लक्ष्य की पहचान और सटीक हमले जैसे अभियानों के लिए विकसित किया गया है। परीक्षण के दौरान इसकी त्वरित तैनाती, युद्ध क्षेत्र में गतिशीलता और फील्ड परिस्थितियों में संचालन क्षमता का प्रदर्शन किया गया अभी हाल ही के दिनों में, और इसकी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिनेंस मिशनों में उपयोगिता भी परखी गई है। और इसका परीक्षण 53 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार की हवाओं के बीच किया गया, जिसमें ये UAV सफल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो ये आत्मघाती ड्रोन है, इसमें और जो नॉर्मल ड्रोन होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। जो आम ड्रोन होते हैं वो मुख्यतः जासूसी और निगरानी के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वहीं जो आत्मघाती ड्रोन होता है वो लक्ष्य पर हमला करने के लिए बना

जाता है। जब दुश्मन के राडार सहित अन्य चीजें नजर आती हैं तो इसे लॉन्च किया जाता है और ये हवा में लंबे समय तक मंडरा सकता है और इशारा मिलते ही लक्ष्य से टकरा कर उसे नष्ट कर देता है। और वहीं जो आम ड्रोन होते हैं वो मिसाइल में हवा में इतना इंतजार नहीं कर पाते हैं, उनकी हवा में रहने की क्षमता थोड़ी सीमित होती है।

इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बताते हैं कि और भी हमारे स्वदेशी जो मानव रहित विमान हैं यूएवी, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से उपलब्ध हैं। लक्ष्य और एक अभ्यास करके डीआरडीओ ने विकसित किया था, जो कि ट्रेनिंग और टारगेट प्रैक्टिसिंग के लिए काम में लिया जाता है। एक निशांत और उत्तम है जो भी डीआरडीओ ने बनाया है, जो कि जासूसी और निगरानी के लिए यूज़ में हम लेते हैं। एक तपस है नाम से जो डीआरडीओ ने बनाया है, वो ट्रैकिंग, जासूसी और लक्ष्य को नष्ट कर देता है, ऐसे उसके उपयोग रहते हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक घातक है, आत्मघाती ड्रोन है वो भी, और वो जो है वो भी डीआरडीओ ने बनाया है, और वो शत्रु सीमा में हमला करने, जासूसी करने और एक नेक्स्ट जन इलेक्ट्रॉनिक वार वेपन के रूप में यूज़ में लिया जाता है। ये स्टेल्थ है, हाइपरसोनिक कॉम्बैट ड्रोन है, और दोस्तों इसमें जो इंजन यूज़ में लिया गया है वो कावेरी इंजन यूज़ में लिया गया है। तो दोस्तों खास बात हमारे लिए ये बन जाती है, क्योंकि ये जो ड्रोन हमने आपको दिव्यास रैमके के बारे में बताया, ये हमारे इसका परीक्षण जोधपुर में किया गया है, और हम निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं, और हम ऐसी ही आशा करते हैं कि हम इसी तरह प्रयासरत हैं और हमारी रक्षा को हम सुनिश्चित कर सकें।

दोस्तों, अब हम आपको करते हैं, आपको बताते हैं काम की बात जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, वो है पर्याप्त और गहरी नींद। हाँ मित्रों, आपके संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद अमृत के समान है। यह आपके दिमाग को तरोताजा करती है, याददाश्त मजबूत करने में मदद करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और बीमारियों और पुरानी समस्याओं के खतरों को कम करती है। हाँ दोस्तों, गहरी नींद, सही नींद। रात के जैसे 11 बज रहे हैं, आप बिस्तर पर हैं, पर दिमाग में चल रही है क्रिकेट कमेंट्री। ऐसा होता है ना? बिल्कुल। तो आज की काम की बात है, नींद को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। दोस्तों, नींद कोई लग्जरी नहीं, बॉडी का फ्री वाला रिपेयर सेंटर है, पर हमारा फोन, टेंशन, चाय, ये सब इसके शटर डाउन कर देते हैं। तो हम अब आपको बताते हैं नींद के 3 बटन जो आप आज से रात को दबा सकते हो। पहला बटन है नींद के चक्र। नींद 90-90 मिनट के चक्कर में चलती है। सुबह 6 बजे उठना है तो 11 बजे सो जाओ, या 12:30 बजे, बीच में 12 बजे सोए तो 90 मिनट का चक्कर टूटेगा। तो ये आप ध्यान रखें कि ये 90-90 मिनट्स का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल नींद को बराबर करता है। और सोने का टाइम फिक्स करो, उठने का नहीं। अपने आप आपका समय स्वतः ही बराबर होता जाएगा और आपकी नींद खुल जाएगी। दूसरी बात है, सोने से 30 मिनट पहले अपने फोन को दूसरे कमरे में सुला दो। स्क्रीन की नीली रोशनी दिमाग से कहती है, अरे भाई अभी दिन है भाई, और हम करवटें बदलते रहते हैं, फोन देखते रहते हैं। फोन नहीं, बिल्कुल हाँ, फोन को आप अपने रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करो, और जहां सो रहे हो वहां आपको नींद लेने के लिए अगर कुछ टाइम पास करना है तो या तो कोई किताब पढ़ो या कोई पुराना अच्छा सा गाना ट्राई करो। सोने तीसरी बात है, सोने से पहले 2 मिनट गुनगुने पानी में पैर डालो। यदि उसमें नमक डाल सको तो नींद और अच्छी आएगी। दिन भर की थकान, टेंशन सब पानी में घुल जाती है। ये दादी माँ का नुस्खा भी है और साइंस भी कहती है कि बॉडी का तापमान 1 डिग्री गिरते ही गहरी और अच्छी नींद आती है। तो दोस्तों, अच्छी नींद सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आपको यदि नींद अच्छी नहीं आती है तो इन नुस्खों का जरूर प्रयोग करें।

0: दोस्तों, आज हम लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई जी के, जो कि असम के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और स्वतंत्र भारत में असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनकी जयंती मना रहे हैं। दोस्तों, उनका जन्म असम के राहा में 6 जून 1890 को हुआ था और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए हुए आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया था।
1: साथ ही आज हम जयंती मना रहे हैं भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय की। अलीपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख षड्यंत्रकारियों में उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय भी थे। उन्होंने अरविंद घोष के वंदे मातरम पत्र में काम किया। इसके बाद वे युगांतर पत्र के संपादक हुए और इस पत्र के द्वारा उन्होंने ज्वलंत क्रांतिकारी भावों का प्रचार करना प्रारंभ किया।
0: दोस्तों, आज है मासी वेंकटेश अयंगार, कन्नड़ साहित्य के महान लेखक, कवि, नाटककार और चिंतक, उनकी जयंती। उनका जन्म 6 जून 1891 को वर्तमान कर्नाटक में हुआ था और वे कन्नड़ भाषा के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यकारों में गिने जाते हैं। दोस्तों, उनकी प्रसिद्ध कृतियों में चिक्कवीर, राजेंद्र, सुबन्ना, शिशम्मा और काकन कोटे शामिल है।
1: श्रोताओं, जयंती के इसी अवसर पर आज हम जयंती मना रहे हैं प्रसिद्ध शायर शौक बहराइची की, जिनका वास्तविक नाम रियासत हुसैन रिजवी था। नेताओं व गलत कार्यों में लिप्त व्यक्तियों पर कटाक्ष करने के लिए एक शेर बहुत ही इस्तेमाल होता है, पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें यह पता होगा कि इस शेर को लिखने वाले शायर का नाम शौक बहराइची है। तो जी हाँ दोस्तों, वह शेर है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा।
0: दोस्तों, इसी के साथ गुरबचन सिंह रंधावा, जो कि भारत के महान एथलीटों में से एक हैं, उनकी जयंती हम मना रहे हैं। डेकाथलॉन और 110 मीटर हर्डल्स के लिए वे प्रसिद्ध रहे। दोस्तों, उन भारत में सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी खिलाड़ियों में उन्हें गिना जाता है। उन्हें 1964 के ओलंपिक उद्घाटन समारोह में वे ध्वजवाहक भी रहे थे भारतीय दल के। 1962 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 1960 और 64 के ओलंपिक खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है।

0: दोस्तों, आज सुनील साहब की जयंती भी है। भारत के महान अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और समाजसेवी सुनील साहब को कौन नहीं जानता। दोस्तों, उनकी प्रसिद्ध फिल्में मुझे जीने दो, पड़ोसन, रेशमा और शेरा थी, और उन्होंने भारतीय फिल्म सिनेमा जगत में काफ़ी योगदान दिया, और उसके लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है, और आज हमने उनके कई गीत आपको सुनवाए भी हैं।
1: साथ ही आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं हिंदी और बंगाली सिनेमा के जाने माने पटकथा लेखक और निर्देशक बासु चटर्जी की। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत बासु भट्टाचार्य का सहायक बनकर की और साथ ही अपनी फिल्मों में कई ऐसी सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर भी बातचीत की। 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा को बासु चटर्जी ने कई ऐसी फिल्में दी जिन्होंने इंडस्ट्री के कई आयामों को बदल दिया। उनकी मुख्य फिल्में थी पिया का घर, चितचोर, स्वामी, खट्टा मीठा, प्रियतमा, चक्रव्यूह, बातों बातों में और सफेद झूठ आदि। बासु चटर्जी ने भारतीय टीवी को भी पहला बिना टोपी वाला जासूस दिया। जी हाँ श्रोताओं, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये सीरियल था वर्ष 1993 में आया ब्योमकेश बख्शी। तो अब हम सुनील दत्त पर फिल्माया ये गीत सुनते हैं।

0: दोस्तों आज के नमस्कार के अंक में इतना ही। अब मुझे यानी कि मनीषा जोशी बोहरा को और मेरे साथ
1: मीता मुल्तानी को इजाजत दीजिए और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सोनू निगम की आवाज़ में सुनिए ये सुगम संगीत।

अनुव जैन की आवाज में अभी आपने सुना ये सुगम संगीत। दर्शन रावल और तुलसी कुमार की आवाज में सुनिए अगला सुगम संगीत।

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 के

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर।

प्यार की दास्तान इस फिल्म का ये नगमा आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ें सरवर के बोल हैं और नौशाद ने तर्ज बनाई है।

राजहट। आइए इस फिल्म का ये नगमा आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल हैं और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सरिक ने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: फिल्म संगीत कार्यक्रम में ये सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं गीता दत्त मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये नगमा। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, OP नैयर की धुन है। फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेस 55।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों से सजा ये गीत। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की धुन है, फिल्म का नाम है आह।

0: जिस देश में गंगा बहती है, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें हैं हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की धुन।
1: रंग हो गया गुलाबी गुलाबी।

पुराने सदाबहार नगमे सुनने के लिए आप ट्यून इन करते हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल, और हम आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करते हैं। आइए श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया।

आज ही पुराने गाने आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। दिल्ली का ठग यह है फिल्म का नाम जिसका नगमा अब हम आपको सुनवा रहे हैं। आशा भोंसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें, एसएच बिहारी के बोल हैं और रवि की तर्ज़।

चलती का नाम गाड़ी। अभी इस फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार, आशा भोंसले को मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और एस डी बर्मन की तर्ज थी। आइए श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है मुनीम जी। आवाज किशोर कुमार की, सहर लुधियानवी के बोल एस डी बर्मन की तर्ज।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं जैफू खां का गाया ये लोकगीत।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम लोक संगीत में। आज हम आपको कुछ चुनिंदा लोक रचनाएं सुनवा रहे हैं, कुछ चुनिंदा लोक गायकों की। आइए अब आपको सुनवाते हैं ओम प्रकाश दमामी की गाई ये लोक रचना।

0: अभी आपने सुना सरजू देवी को। लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर।
1: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय, हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2000

0: 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, ये है आज के लोक संगीत कार्यक्रम की आखिरी भेंट, जयपुर खां की आवाज में ये लोक रचना।

इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। लीजिए पेश है सुगम संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है प्रोग्राम सुगम संगीत में। आइए आपको ये गजल सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास की आवाजों में। दिलीप ताहिर का कलाम है।

सामिन, ये गज़लें आप सुन रहे हैं सुगम संगीत प्रोग्राम में, आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। आइए आपको ये गज़ल सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में। कलाम है अश्क अम्बालवी का।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम सुगम संगीत में। अंतराल में जाने से पहले आपने सुना था चंदन दास को, और आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं आबिदा परवीन की गाई ये गजल।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के एक बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रादेशिक समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भीलवाड़ा जिले के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया है। श्री शर्मा ने

कहा कि सरकार ने पानी और बिजली की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। डबल इंजन की सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा हर व्यक्ति को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने गांव में मॉर्निंग वॉक और धर्मी तालाब के पास योगासन भी किया। इससे पहले कल रात उन्होंने ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T-124 रिद्धि नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। वहीं वन विभाग ने एहतियात के तौर पर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।
1: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। पर्यटकों को नालघाटी वन क्षेत्र में बाघिन T-124 रिद्धि दो नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। पर्यटकों के अनुसार शावक 1 से 2 सप्ताह के हैं तथा इनकी संख्या अधिक भी हो सकती है। 2019 में जन्मी बाघिन रिद्धि प्रसिद्ध बाघिन मछली की वंशज है तथा एरोहेड की बेटी है जो तीसरी बार माँ बनी है। शावक देखे जाने की खबर के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में हर्ष की लहर है। वहीं वन विभाग की ओर से क्षेत्र में सघन निगरानी और गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले महीने की 31 तारीख तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन और अनुशंसाएं भेजने की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू की गई है। देश की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में आने वाले पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये समारोह राष्ट्रपति भवन में 23 जून को आयोजित किया जाएगा। और अब मौसम। राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बरसात दर्ज की गई। प्री मॉनसून गतिविधियों के चलते करौली, दौसा, डूंगरपुर, नागौर और जयपुर सहित कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। सबसे अधिक 14 मिलीमीटर पानी बीकानेर के डूंगरगढ़ और झालावाड़ के डग में बरसा। 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। इससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि विभाग ने 8 जून से फिर से तापमान में बढ़ोतरी की आशंका व्यक्त की है। इस बीच अगले 24 घंटे तक पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काका मेगाराहा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से और जापान ने मलेशिया को 8-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान भाई इन दिन आप खेती बाड़ी रे जगह काम काज है वह आप लगो लग क्रिया करा और इनरे हाथे हाथे आप जो पशुपालन भी काम काज कर रहा है इनरे हाथे हाथे आप कई भात भातरी जी की सब्जियां है वे अपने खेतर में आप ले रिया हा। और खास तौर से किसान भाई री कोशिश आईज रहे के भाई जिकी बूंद बूंद जिकी सिंचाई है कम पानी रे महीने आप बेसी मात्रा महीने जिकी भी पैदावार है वह आप लेनी चाहो और लाला कई दिन सु आप किसान भाई खेतर महीने तविया बापरीन किसान भाई करिया है हमें पाचो पाटो दिन समतल भी आप बना रिया है आने वाला बगतर महीने किसान भाई आप रे जिकी खरीब री जिकी फसल है लेवेला जो बाजरो लेवेला मूंग है मोट है लेवेला किसान भैया आज आपने जानकारी देवा के भाई मूंग री जिकी उन्नत खेती है वे आप किन तरह सु कर सका। मूंग एक दलहनी फसल हुआ करे जो को खरीब री फसल महीने आ उगाई जा करे और खास तौर से आप राजस्थान में बात करा तो राजस्थान री जिकी जलवायु है वह मूंग री खेती वास्ते बहुत ही उपयुक्त हुआ करे। मूंग री खेती वास्ते सगल सु पहला तो आपने भूमि री बढ़िया तैयारी करनी पड़े बढ़िया आप तविया जीव आप बढ़िया काटा उन बाद महीने बारिश शुरू हुए उन वक्त हड़ू आपने बढ़िया कल्टीवेटर दो तीन दान बढ़िया जुताई करा और खरपतवार आप खेत मुक्त कर दा और बिल्कुल समतल बना दा। और एक बात और किसान भाई अपने ध्यान रखना है कि आप मूंगरी पैदावार लेनी चाहवा तो वोटे जमीन महीने मान लो कटे उदई है दिमक जिन्हें आप क्या करा तो उन्हें नियंत्रण वास्ते अपने कई करना चाहिए क्लोर पायरीफॉस 1.5% पाउडर

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल और FM सन सिटी चैनल 102.1 MHz पर और 531 KHz पर। श्रोताओं, दिन के ठीक 2 बजकर माफ कीजिएगा दिन के ठीक 1 बजकर 15 मिनट हो चुके हैं। प्रस्तुत है आधी आबादी का मनपसंद कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: नारीवाटी का सुनने वाली सभी सखियों को उनकी प्यारी सी सखी स्वप्नीला और
1: वंदना शर्मा का
0: प्यार भरा नमस्कार।

0: ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। सचमुच स्वप्निला, जीवन ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। इसमें कभी खुशियों के रंग बिखरते हैं तो कभी चुनौतियां हमें नई सीख देकर आगे बढ़ने का हौसला देती है।
1: बिल्कुल वंदना, और ज़िंदगी में खुशियाँ तब आती है जब हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी मुस्कुराहट देखकर के दिल खुशी से भर उठता है।
0: वे गिरकर संभलना जानते हैं, रूठकर फिर मुस्कुराना जानते हैं, और हर दिन का जो स्वागत होता है वो पूरे उत्साह के साथ करते हैं। शायद इसी वजह से जिंदगी इतनी खूबसूरत लगती है।
1: बिल्कुल वंदना, बच्चे तो फूलों की तरह होते हैं। उन्हें खिलने के लिए सही माहौल चाहिए होता है, धैर्य और स्नेह चाहिए होता है। उन्हें एक सुरक्षित और प्यार भरा बचपन और होना चाहिए उनके आसपास एक ऐसा आत्मविश्वास जो उनकी जिंदगी की नींव को मजबूत करता है।
0: तो आइए मुस्कुराते हुए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर इस प्यारे से गीत के साथ।

0: सखियों, कहा जाता है कि अगर जिंदगी की असली खूबसूरती देखनी हो तो बच्चों की मुस्कान में देखनी चाहिए। उनकी खिलखिलाहट में एक नई उम्मीद होती है। लेकिन जो उनकी खिलखिलाहट है वो बरकरार रहे, उसकी जो चुनौती है वो हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत बढ़ गई है।
1: सही बात है, वरना बच्चों की मुस्कुराहट तो तब कायम रहेगी जब हम बच्चों को समय देंगे। लेकिन आजकल हमारी जो सखियां हैं, जो नौकरी पर जाती हैं, काम
0: जी
1: करती हैं, उनके पास इतना समय ही नहीं हो पाता कि वो अपने बच्चों को समय दे पाएं। और वरना होता क्या है कि जो प्राइवेट या सरकारी नौकरी में होती है महिलाएं, उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाता है, तो
0: जी
1: उनके लिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत की बात होती है वो यही होती है कि हम कितनी छुट्टी लें। तो अगर वो छुट्टी लेने का भी सोचती हैं, छुट्टियां खत्म हो जाती है, तो ये सोचते हैं कि अब मैं किस पे विश्वास करके अपने बच्चे को छोड़ के जाऊं।
0: पहले पहले के ज़माने में तो नानियाँ दादियाँ जो हुआ करती थी वो बड़े आराम से बच्चों को रख लिया करती थी, तो ये तकलीफ़ कम आती थी। अगर मैं जो है माँ है वो वर्किंग वुमेन भी है तो चीज़ें मैनेज हो जाती थी। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो ये दिक्कत बढ़ती जा रही है कि बच्चों को हम कैसे मैनेज करें।
1: बिल्कुल वंदना, ये होता है। और कोई भी महिला, स्पेशली जो माँ होती है ना, वो एकदम से किसी पे विश्वास नहीं कर सकती अपने बच्चे को छोड़ने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, उनके पास में एक डे केयर का ही ऑप्शन रहता है।
0: जी
1: लेकिन हमारी बहुत सारी सखियाँ हैं, उनके दिमाग में ये एक डर रहता है, कुछ ना कुछ भ्रांति भी रहती है कि अगर हम बच्चे को डे केयर में या क्रैच में रखेंगे तो हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा या नहीं, सेफ रहेगा या नहीं, उसको कोई तकलीफ आएगी या नहीं। तो आज है ना, इसी मैटर पे क्यों नहीं हम बातचीत करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने भ्रांतियों की बात की तो आज इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम फोन आउट के माध्यम से बातचीत करेंगे प्रियंका जैन से, जो वात्सल्य चाइल्ड केयर की सह संस्थापक हैं और वर्ष 2010 से बच्चों की देखभाल के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वर्ष 2016 से एम्स जोधपुर में भी क्रैच का सफल संचालन कर रही हैं और पिछले कई वर्षों से उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़े अभिभावकों के 500 से अधिक बच्चों की देखभाल करने में और उनका विकास करने में योगदान दिया है। और तो चलो सुनते हैं फोन आउट के माध्यम से प्रियंका जैन जी से की बातचीत, जिनसे बात कर रही हैं स्वप्नीला श्रीवास्तव और जिसका विषय है डे केयर और क्रैच में बच्चों की सुरक्षा।
2: नमस्ते प्रियंका जी,
3: नमस्ते मैम,
2: कैसे हैं आप?
3: एकदम बढ़िया। आप बताइए, आप कैसी हैं?
2: बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज हमारी बहुत सारी श्रोताएं, हमारी ऐसी सखियां जो इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, वो आज बहुत ज्यादा उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आपने एक इतने अच्छे काम की शुरुआत करी है। आप डे केयर चलाती हैं, आप क्रैच चलाती हैं, तो आपको ये कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
3: देखिए, ये काम पहले से मैंने कभी सोच के नहीं रखा था कि मैं करूंगी ऐसा कुछ काम। बस मन में इतना था कि बच्चों के सामने मुझे कुछ करना है।
2: जी
3: एंड ऐसा ही था कि स्कूल जॉब या वैसा कुछ नहीं करना है जिसमें मुझे बंधी बंधाई जीनी पड़े।
2: जी
3: मुझे ऐसा था कि मेरे को अपने घर को भी देखना था, सब कुछ करना था। तो फिर मुझे ये एक ऑप्शन सही लगा। हालांकि इस शुरुआत किसी और तरीके से हुई थी। मेरे एक ब्रदर है, डॉक्टर प्रदीप जैन है, वो पीडियाट्रिशियन है।
2: जी
3: वो मेरे पीछे लगे हुए थे कि तुमको ये काम करना चाहिए। बट शुरुआती दिनों में मैं इस चीज से कन्विंस नहीं थी क्योंकि मुझे लगा था कि मैं कर नहीं पाऊंगी इस चीज को। बट इवेंचुअली धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनी और हमने ये स्टार्ट कर दिया।
2: ओके। लेकिन क्या होता है, हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं ना प्रियंका जी, तो हमें कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको भी अपने फील्ड में कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना तो करना पड़ा होगा।
3: बिल्कुल, बहुत बहुत चुनौतियां आई थी। मैंने जब इस काम को स्टार्ट किया था तो मैंने एक इसकी शुरुआत करी

0: एक टॉय लाइब्रेरी से। टॉय लाइब्रेरी एक जोधपुर के लिए बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था।
1: जी
0: जैसे कि हम बुक्स एक्सचेंज करते हैं, उस तरह से हम टॉयज एक्सचेंज करते थे।
1: टॉयज एक्सचेंज करते हैं, वाओ
0: जी,
1: जी
0: ये आई थिंक वो जो कॉन्सेप्ट था, जब मैंने 2010-11 के लेट 2010 के करीब स्टार्ट किया था हमने,
1: जी
0: तब ये कॉन्सेप्ट जोधपुर के लिए बहुत नया था, या फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत समय से पहले का कॉन्सेप्ट था।
1: जी
0: तो शुरुआत में तो लोगों को बहुत एक्साइटमेंट मिला इस चीज को देख के कि ये नए नए बच्चों के लिए टॉयज आ रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। बट धीरे धीरे धीरे करके बच्चों को चाहिए कि टॉयज हमारे साथ कोई खेले।
1: जी
0: बड़े लोग इतने बिजी, मदर्स इतनी बिजी हैं कि वो खेल नहीं पाती थी, तो धीरे धीरे उनको लगने लगा कि ये तो बच्चे के साथ खेलेगा कौन। तो
1: जी
0: हमने इसको अलग तरीके से कुछ करने की कोशिश की। हमने कहा कि आप बच्चों को हमारे पास भेजिए, हम खेलेंगे उनके साथ में, अगर आपके पास में टाइम नहीं है खेलने का। एंड धीरे धीरे बच्चे आने लगे, पेरेंट्स को भी अच्छा लगने लगा, और उनको लगा कि भाई ठीक है, 1-2 घंटे हम भी अपने काम कर लेते हैं और बच्चा भी हमारा सेफ जगह पे है और एंजॉय भी कर रहा है, तो
1: जी
0: फिर हम वहां छोड़ देते हैं बच्चे को। तो एक्चुअल में इस डे केयर की शुरुआत का फर्स्ट स्टेप ये टॉय लाइब्रेरी रहा, जो कि इवेंचुअली डे केयर में कन्वर्ट हो गया।
1: ओके, वेरी नाइस आइडिया।
0: तो इसी तरह से ये हम आगे बढ़ते चले, धीरे धीरे एक ईंट से ईंट जुड़ती गई और हम आगे चलते गए।
1: ओके, लेकिन क्या होता है पिताजी के आजकल, जैसे कोई देखता है अरे बच्चे हम रख लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं है ना, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो डे केयर चलाने में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है?
0: देखिए मैम, एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिनकी भी ये सोच रहती है कि बच्चे ही तो रखने हैं, वो एक मैं अलग तरह का से इस चीज को बोलना चाहूंगी
1: जी
0: कि बच्चे हैं बच्चे, हम किसी के जिगर के टुकड़े को हम अपने पास रख रहे हैं, उसको उसका पालन पोषण कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होके अपने बच्चों से भी बढ़कर उसका ध्यान रखना पड़ता है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, जो मुझे लगा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, प्री स्कूल टीचर्स होती हैं या नर्सरी टीचर्स होती हैं वो, या फिर हमारे डे केयर के केयरकर्स की बात करें आप,
1: जी
0: हम लोग अपना बेस्ट देते हैं। क्योंकि एक बच्चे को पहले, कई बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं उनका पहला कदम भी हम ही बढ़वाते हैं,
1: जी
0: हमारे सामने वो लेता है, बट लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है छोटा बच्चा ही तो है, उसको क्या करना है, कुछ खास काम नहीं है। लेकिन हमें उसकी एक-एक माइलस्टोन्स को हमें ऑब्जर्व करना होता है, उस पे उसको बढ़ाना होता है, एंड उसकी छोटी छोटी छोटी छोटी चीजों को हम नए रूप में उसको बढ़ता हुआ देखते हैं। तो जो केयर टेकर्स और स्कूल टीचर्स, प्री स्कूल टीचर्स होती हैं, उनको ये काम करना बहुत ही चैलेंजिंग रहता है, और सारे पेरेंट्स के ट्रस्ट के साथ।
1: बिल्कुल, ये बात तो है प्रियंका जी। लेकिन जैसे आप बता रही है आपके पास छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, है ना? तो ऐसे
0: जी
1: छोटे छोटे बच्चे की देखभाल में आप किन विशेष बातों का ध्यान रखती हैं?
0: देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास कई बच्चे 6 महीने की उम्र से भी आ जाए।
1: जी
0: पेरेंट्स की, मदर्स की मैटरनिटी लीव्स होती हैं वो 6 मंथ्स की रहती है जनरली, मैक्सिमम जॉब्स में या वर्क कल्चर में।
1: जी
0: तो वो बच्चा जब खाना भी बस शुरू ही किया होता है तभी से हमारे पास आ जाता है।
1: जी
0: तो उस बच्चे के लिए हमें स्पेशल, मतलब उसका हाइजीन मेंटेन करना, उसके लिए उसकी एक्स्ट्रा केयर करना, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। और सबसे पहली बात है उस बच्चे से ज्यादा उस माँ को संभालना, उसकी मदर की माइंडसेट को संभालना, क्योंकि उस मदर के लिए आसान नहीं है कि अपने बच्चे को किसी अनजान
1: चले
0: हाथों में
1: छोड़
0: दे कर
1: दे।
0: छोड़ कर वो अपने काम पर निष्फिक्र होके रह सके।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, या सबसे बड़ा हमारा माइंड क्राइटेरिया रहता है कि उसकी मदर को तसल्ली रहनी चाहिए कि उसका

0: एक बहुत ही सुरक्षित माहौल में है और जहाँ पे उसको भरपूर प्यार मिल रहा है, वो घर के माहौल में ही बड़ा हो रहा है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रियंका जी, क्योंकि कोई भी माता होगी है ना, माता के पिता भी होंगे जो वहाँ छोड़ते होंगे आपके वहाँ पे बच्चों को भी, तो सबके
0: जी
1: दिमाग में यही रहता है कि मेरा बच्चा सुरक्षित है या नहीं, उसको कुछ हो ना जाए, चोट नहीं लग
0: बिल्कुल
1: जाए या उसकी तबीयत खराब नहीं हो जाए। तो
0: जी।
1: ऐसे में फिर आप बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं रखती हैं?
0: देखिए हम लोग एक तो बहुत ही जो कि काम को बहुत समय से कर रहे हैं, या पहले हम अपने स्टाफ को पूरी तरह से ट्रेन करते हैं
1: जी
0: कि वो उनको किस परिस्थिति में, कैसी परिस्थिति में बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है।
1: जी
0: दूसरा, रेशियो हम स्टाफ और किड्स का उस अकॉर्डिंग रखते हैं कि वो इजीली मैनेज कर पाए बच्चों को। एंड हाइजीन एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है
1: जी
0: कि साफ सुथरा माहौल जिसके अंदर बच्चा आराम से, बच्चे नीचे लोटते भी हैं, खेलते भी हैं। हम नहीं चाहते हम कि हम बच्चे को रिस्ट्रिक्ट करें कि ये नहीं करो वो नहीं करो, तो हम बच्चों को भरपूर, बच्चों को भागने दौड़ने सब तरह की जगह चाहिए होती है,
1: जी
0: लेकिन उसी समय हमें ये भी अश्योर करना पड़ता है कि बच्चे सेफ रहें, उनकी सेफ्टी होनी चाहिए। तो
1: जी
0: उसके लिए हमें बच्चे को डिसिप्लिन में भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। एंड जो एकदम ही छोटे बच्चे हैं उनको हम ऑब्वियसली गोद में रख के या पालनों में या उनके स्ट्रॉलर्स में इस तरह से रख के या अलग रूम में करके ही उनको हम लोग सेफ कर
1: जी
0: पाते हैं।
1: अच्छा, ऐसा होता है ना प्रियंका जी के घर में अगर 3-4 बच्चे हैं है ना, तो सभी बच्चों के स्वभाव भी अलग अलग होते हैं। लेकिन अब
0: बिल्कुल
1: आपके उस स्कूल में, डे केयर में स्पेशली और क्रैच में इतने सारे बच्चे होंगे तो सभी के स्वभाव अलग अलग होते हैं, तो फिर इतने
0: जी।
1: सारे बच्चों को आप कैसे संभालती हैं?
0: मैं ये बोलना चाहूंगी मैम कि एवरी चाइल्ड इज अ न्यू लर्निंग फॉर अस। हर बच्चा अलग होता है, अलग परिवेश से आया है, अलग माहौल में पला बड़ा है, उसके
1: जी
0: घर का माहौल एकदम अलग है। कुछ
1: जी
0: बच्चे, बच्चों को लैंग्वेज इश्यू होता है बहुत। इनफैक्ट हमारे पास कई बच्चे होते हैं जो साउथ से आते हैं या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के आते हैं, जो उन्हें हिंदी तक नहीं आती है।
1: जी
0: तो वो ये सारे बच्चे हमारे लिए बड़े चैलेंजिंग होते हैं कि इनको हम किस तरह से अडेप्ट करें, हम वो हमें, इनफैक्ट मैं करना चाहूंगी अपने आप को कि वो हमें कैसे अडोप्ट कर लें,
1: जी
0: क्योंकि वो जब तक हमसे, हमसे सिक्योर नहीं
1: फील
0: फील करेंगे
1: करेंगे।
0: वो खुश नहीं रहेंगे बच्चे।
1: जी
0: तो हम लोगों को थोड़े दिन उस बच्चे को, हर एक बच्चे को समझने में लगते हैं। उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चे की मदर हमारे साथ में रुके,
1: जी
0: 3-4 दिन, हफ्ता भर एटलीस्ट रुके, तो जिससे कि हम उस बच्चे की हैबिट्स को थोड़ा सा समझ पाए। फिर उसमें कुछ बच्चे थोड़े एग्रेसिव नेचर के भी होते हैं,
1: जी
0: तो हमें उस तरीके से ही उनको हैंडल करना पड़ता है कि धीरे धीरे बच्चों, बच्चों को एक्चुअल में आदत नहीं होती है कि ग्रुप में रहते हैं, क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं कि
1: सिंगल
0: अधिकतर बच्चे
1: फैमिली में।
0: न्यूक्लियर फैमिलीज में रह
1: जी
0: रहे हैं।
1: जी
0: एंड एक्चुअल में न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले बच्चों को ही डे केयर में आने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो जहाँ पे दादा दादी या नाना नानी हैं तो शायद हमारी जरूरत भी नहीं होती है, हम लोग लास्ट ऑप्शन में ही आते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग।
1: जी
0: तो उस केस में यही होता है कि उन बच्चों को, हर बच्चा अपने घर का राजा है ये मान लीजिए, क्योंकि
1: जी
0: जिस चीज की उसको जरूरत है उसको बिना मांगे मिल जाती है, या जिस चीज पर उसने हाथ रख दिया वो उसी की चीज है। पर जब वो बच्चा ग्रुप में रहने आता है तो उसको शेयरिंग भी नहीं आती है, उसको बच्चों के साथ खेलना ही नहीं आता है। तो इसलिए हम इनिशियली थोड़ा दिन, 2 दिन बच्चे की मदर, जिससे भी बच्चा एक्वेंटेड है, मे बी उनकी दादी हो सकती है या नानी हो सकती है या और भी कोई रिलेटिव या कोई भी जिससे बच्चा एक्वेंटेड है, उनको हम रोकते हैं,
1: जी
0: धीरे धीरे उसको बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं।
1: जी
0: एंड उस माहौल, हमें भी समझ आने लग जाता है उस बच्चे का बेसिक नेचर क्या है, तो उस अकॉर्डिंग फिर हम उसको हैंडल करते हैं, उसको उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से शुरुआत के दिन, और फिर धीरे धीरे वो हमारे माहौल में ढल जाता है बच्चा।
1: तो ऐसा होता है ना प्रियंका जी, जैसे कि घर में बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने रखते हैं ना, कि भाई बच्चा ये खेले या उससे परेशान नहीं हो या इससे बोर नहीं हो। आपसे आज बात करके ना ऐसा फील हो रहा है कि जो सखिया इस कार्यक्रम को आज सुन रही है ना, उनकी आधी टेंशन तो खत्म हो गई है कि अब उनको अपने बच्चे को अगर ऑफिस जा रही हैं या किसी काम से जा रही हैं तो निश्चिंत होकर वो एक अच्छे से डे केयर में, स्पेशली आपके डे केयर में आराम से छोड़ सकती हैं।

0: क्योंकि बच्चे आपके वहाँ पे अच्छे से आपसे अटैच्ड हो जाते हैं, आप कैमरे की फैसिलिटी भी देती हैं और इमरजेंसी हो तो आप फूड वगैरह भी प्रोवाइड करें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रियंका जी की, कि अब ये प्रोग्राम हमारी बहुत सारी सखियाँ सुन रही हैं, बहुत सारे बच्चे भी सुन रहे होंगे प्यारे प्यारे, कुछ सखियाँ जो ये सोच रही होंगी कि आपके जैसा कुछ क्रिएटिव वर्क करें, तो आप समाज को और हमारे माता पिता को आज क्या संदेश देना चाहती है, जो भी बच्चों के माता पिता हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, है ना, उन सबको
1: जी
0: आप क्या संदेश देना चाहती है?
1: मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि पेरेंटिंग एक आर्ट है,
0: जी
1: और इनफैक्ट आज के जमाने की पेरेंटिंग और जो कि पहले कुछ सालों पहले पेरेंटिंग हुआ करती थी उसमें बहुत फर्क आ गया है। ये
0: जी
1: आप शायद आप भी मुझसे अग्री करेंगी
0: जी
1: कि जो पहले के हमारे माता पिता हुआ करते थे, या एक जनरेशन पहले, एक
0: जी
1: डेकेड पहले वाले माता पिता की सोच, अपब्रिंगिंग या करने का तरीका और आज के माता पिता का तरीका बहुत बहुत बदल गया है।
0: जी
1: तो यही चाहूंगी कि बस आप अपने बच्चे, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है, इसमें पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते। जो
0: जी
1: पहले हम किसी पर भी आंख मीच के भरोसा करके, हम अपने बच्चों को किसी के भी हवाले करके हम निष्फिक्र हो जाते थे, आज हम किसी पे भी भरोसा कर सकते हैं।
0: जी
1: इस वजह से हमें बच्चों को अकेला छोड़ना या किसी के पास में छोड़ना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया हमारे लिए।
0: जी
1: तो आप अगर वर्किंग हैं तो मैं अगेन वही कहना चाहूंगी, अगर आपके पास में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो इससे लकी आप बिल्कुल भी नहीं है। दादी नानी का प्यार जो अगर को मिल रहा है
0: जी
1: और उनकी छत्र छाया में बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है।
0: जी
1: एंड हमारा नंबर लास्ट में आता है जब सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। तो
0: जी
1: लेकिन हाँ, मैं बस इतना बोलूंगी कि हम दादी नानी की जगह तो नहीं ले सकते, माँ बाप की जगह तो नहीं ले सकते,
0: जी
1: लेकिन हाँ हम सेकंड बेस्ट जरूर बनने की कोशिश कर रहे हैं और हर दिन हम नया कुछ सोच सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि हम आपके बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट दे पाए।
0: जी प्रियंका जी, आज आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और इस कार्यक्रम को सुनने वाली ये सभी सखियों को भी, और आपने इतना अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
2: सखियों, अभी आपने बातचीत सुनी प्रियंका जैन की स्वप्निला श्रीवास्तव से, जिसका विषय था डे केयर में और क्रैच में बच्चों की सुरक्षा। और अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: स्वप्निला, आज सुबह जब स्टूडियो आने के लिए तैयार हो रही थी ना, तो एक अलमारी में से मेरी एक बहुत पुरानी सी डायरी नीचे गिर गई, जिसमें मेरे स्कूल के दिनों की तस्वीरें थी।
1: अच्छा
0: बस उन्हें देखते ही रह गई और सोचने लगी कि वक्त कितनी जल्दी पंख लगाकर उड़ जाता है।
1: बिल्कुल वंदना, अब तो तुमने मेरे दिल की बात कह दी। कल रात को है ना, मैं भी मेरी बेटी की एक पुरानी सी फ्रॉक देख रही थी और उसको अब आती भी नहीं है घुटने तक भी। सच में जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो लगता है कि पता नहीं कब बड़े होंगे, और जब बड़े होते हैं ना तो लगता है अरे यार बच्चा छोटा ही रहता तो कितना अच्छा रहता।
0: बिल्कुल, और इसी बदलाव के साथ कितनी सारी जो चीज़ें होती है ना, वो एक साथ बदल जाती है। जब वो घुटनों के बल चलते थे, तब उनकी ज़रूरतें सिर्फ दूध और खिलौने थी, लेकिन आज जो है ना, उनकी जैसे जैसे उनकी उम्र बदलती गई, उनकी ज़रूरतें भी बदलती गईं।
1: ये बात तो है ही वंदना, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है, उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसकी रुचियां, उसकी आवश्यकताएं सब अलग अलग होती है। और ऐसे में हर माता पिता का ये दायित्व रहता है कि वो हर बच्चे को उसकी उम्र, उसकी परिस्थिति के अनुसार उसकी ज़रूरत को समझे और उसका उचित मार्गदर्शन भी करे। लेकिन क्या होता है वंदना, कि मैंने भी ये महसूस किया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उन्हें हमारी है ना शारीरिक मौजूदगी चाहिए होती है। उनको लगता है मेरे
0: बिल्कुल।
1: मम्मी मेरे पास पास रहे, अपने पीछे पीछे घूमते
0: बिल्कुल।
1: रहते हैं, है ना। पर जैसे जैसे बच्चा जो बड़ा होने लगता है ना, उसको क्या है धीरे धीरे स्पेस की जरूरत पड़ जाती है। छोटा बच्चे को तो बहुत प्यार चाहिए होता है, बहुत देखभाल चाहिए होती है ना, पर जब वो धीरे धीरे सीखने लगता है, खेलने लगता है, अपनी बात व्यक्त करने लगता है, तो फिर लगता है यार अब तो हमारा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है।
0: और अब हमारी सखियों को भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए। और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: किससे?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो वंदना, हम नारी वाटिका में बात कर रहे हैं प्यारी प्यारे बच्चों की, और जो बच्चे होते हैं ना उनका तो गुस्सा भी बहुत ही अच्छा वाला होता है, एकदम मस्त वाला कि वो कभी जिद करता है, कभी चुप रह के अपना गुस्सा व्यक्त करता है। कभी कभी हम क्या होता है कि हमें ऐसा भी लगता है कि वो शायद डर के भी अपनी मन की बात नहीं बता रहा है ऐसे। तो हमें तो ऐसा लगता है भाई, बच्चे को तो समझने की कोशिश करना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, बजाय इसके कि हम उसके ऊपर गुस्सा करें।
8: पहले तो सच कहूँ ना स्वप्निला, मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाता था बच्चों की छोटी छोटी बातों पे, या वो चिड़चिड़े हो जाते थे। लेकिन फिर मैंने भी समझा कि बच्चों के इस बदलते व्यवहार के पीछे हमेशा कोई ना कोई भावनात्मक कारण हो सकता है। स्कूल में किसी दोस्त से अनबन हो गई हो उनकी, या फिर पढ़ाई का भी कोई तनाव हो। जो बच्चे जानबूझकर हमेशा हमें परेशान नहीं करते, वो एक इशारा होता है उनका अपनी उलझने जाहिर करने का।
7: ये बात तो है ही वंदना, ऐसा होता है कि जैसे हम अपना मोबाइल चला रहे हैं ना, बिजी है, लेकिन वो हमसे कुछ बात करना चाह रहा है, हम सुन नहीं रहे, तो फिर वो हमें धीरे धीरे मारना शुरू करता है, गुस्सा करना शुरू करता है, चिल्लाना शुरू करता है। तो बच्चा चाहता है कि उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, उसकी बात को सुना जाए, हम सुनेंगे तो वो हमसे दिल से कनेक्ट भी होता है। हमारी क्या गलती, हम बच्चे की तरफ तो ध्यान देते नहीं है, जिस वजह से बच्चा अपनी जो मन की बात होता है वो ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता। फिर होती है गलत फहमियां बच्चे के बीच में और उसके मम्मी पापा के बीच में।
8: एक्चुअली ना, जिसे हम बदतमीजी समझ लेते हैं, वो असल में उनकी मदद की एक पुकार होती है। इसका मतलब ये होता है कि उन पर हमें चिल्लाने डांटने की बजाय उनके रुक कर पूरी उनकी बात सुननी चाहिए। और

0: बिना जज किए जब हम उनकी बात सुनते हैं ना, तो उनका आधा गुस्सा वैसे ही शांत हो जाता है और अपनी बात वो खुलकर सामने रख पाते हैं।
1: ये बात तो है ही वंदना की, जब है ना बच्चे की, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, 1-2 साल का, अगर हम उसकी बात भी बहुत अच्छे से सुनते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। और हम उसको भी अगर अवॉइड करते हैं ना, तो वो बहुत अलग तरीके से बिहेव करने लग जाता है, गुस्सा, चिल्लाना, चीजें
0: जी
1: फेंकना। तो ये बात तो सही है कि अगर हम चाहते हैं बच्चा खुलकर हमसे बात करे, तो हमें भी खुलकर उसको, उसके साथ में, उसकी भावनाओं के साथ में जुड़ना होगा।

0: स्वप्निला, एक बात बताओ, हम पेरेंट्स अनजाने में कई बार बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि जब भी हमारा बच्चा किसी चीज़ में कम रह जाता है या फिर कोई कम मतलब कुछ कम कर पाता है तो हम ही चिड़चिड़े हो जाते हैं और फट से उसकी तुलना करने लगते हैं कि देखो फलाने का बेटा या बेटी कितना अच्छा कर रहा
1: फलाने की तो छोड़ो,
0: है।
1: हम तो भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों के बच्चों से भी कंपैरिजन करने लग जाते हैं। और दिक्कत यह है कि हम ये नहीं सोचते कि अनजाने में हमारे ही बच्चे के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और उसमें अंदर ही अंदर एक हीन भावना हो सकती है। हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा होती है वंदना, कोई किसी चीज़ में अच्छा आता है, कोई किसी में, है ना। लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए कि उसको ऐसा नेगेटिव जो हम व्यू देते हैं वो देने की जगह हमें उसकी उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए। कह रही भाई गणित में कम लाया, कोई बात नहीं, हिंदी

0: क्योंकि जो ये तुलना का जहर होता है ना, ये बच्चों को अंदर से तोड़ देता है। और हमें ये समझना चाहिए कि हमारा बच्चा भी यूनिक है ना, उसके अंदर भी कोई ना कोई खूबी है। कि भाई मैथ्स में अच्छा नहीं कर रहा, इंग्लिश में अच्छा, या एकेडमिक में अच्छा नहीं कर रहा, तो वो शायद स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो।
1: बिल्कुल, वरना हो सकता है वो संगीत में अच्छा हो, चित्रकला में अच्छा हो, नृत्य में अच्छा हो, बहुत सारी गतिविधियां हैं कि वो उसमें अच्छा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो बच्चों को पहचानना चाहिए कि उसका किस में इंटरेस्ट है और उसके शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए वो किस क्षेत्र में जाना पसंद करता है, ताकि उसमें आत्मविश्वास भी आए, है ना। और
0: बिल्कुल।
1: वो ऐसी भावना से ग्रसित नहीं हो कि उसे कुछ नहीं आता। उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप में उसकी मदद करनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं जानते या कुछ समझते नहीं है। और हम पेरेंट्स की जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उनकी प्रतिभा को समझें, या जो उनके अंदर कोई भी आर्ट है उसको समझें, उसे निखारें और उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिससे वो आगे बढ़ सके।
1: वंदना, मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चा सबसे ज्यादा विश्वास करता है अपने माता पिता पे, और जो भरोसे की नींव होती है ना बच्चे में, वो आती है माता पिता से।
0: जी
1: तो जो माता पिता कह रहे हैं वो बच्चे के लिए सही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आपको ईश्वर का दर्जा दे रहा है, तो हमें भी बच्चे को उस हिसाब से उसके मन की बात को समझना चाहिए, और उसके जो मन की भावना है कि वो हमें ईश्वर समझ रहा है, तो उस लेवल पे हम उसे लेके आए कि भाई हम तेरी बात को सुन रहे हैं, हम तेरी बात को समझ रहे हैं।

वंदना, हमने तो बातें तो बहुत कर ली बच्चों की, लेकिन हमारे बच्चे बड़े भी तो होंगे, और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, उनको अपना स्वतंत्र एनवायरनमेंट चाहिए, वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं।

0: अपना स्वतंत्र एनवायरनमेंट चाहिए, वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, है ना। लेकिन उसके साथ साथ उनको चाहिए कि ओ, मन से तो ऐसे सोचते कि हमारे पेरेंट्स हमसे दोस्तों की तरह व्यवहार करें, हमें सहयोग दें, हम पर विश्वास भी करें, है ना।
1: हाँ, आप बात कर रहे हो टीनेजर्स
0: बिल्कुल।
1: की। ये सचमुच ही एक संवेदनशील उम्र होती है, बहुत इसमें बच्चे सेंसिटिव हो जाते हैं, और क्योंकि उनके जो शरीर और जो उनकी पर्सनालिटी जो होती है उसमें, और
0: बहुत
1: उनके
0: हार्मोन्स भी चेंज
1: बहुत
0: होते
1: सारे हार्मोनल चेंजेस
0: हैं।
1: होते हैं, जो वो खुद को समझने में बहुत उनको ही मुश्किलें आने लगती है। तो हमें तो उनको कॉपरेट करना चाहिए, हमें उनको मतलब एक बॉसी नेचर नहीं रखना चाहिए कि उनके साथ हम बॉस की तरह बिहेव करें, हमें उनका एक दोस्त बन के चलना चाहिए ताकि वो अपनी हर बात हमसे शेयर कर सकें।
0: बात तो सही है, ऐसा नहीं हो कि हमारे जो युवा बच्चे वो मोबाइल के अंदर ही रह जाएं। हमें उनको वो समय देना होगा, हमें उन्हें स्पेस भी देना होगा ताकि वो अपनी बातें हमसे खुल के कर सकें, क्योंकि इस
1: साथ
0: एज में उनको हर चीज़ हमसे खुलकर डिस्कस करनी ज़रूरी है।
1: और ज़रूरी है कि हम उनका भरोसा जीतें ताकि कोई भी गलती हो तो वो उसे छुपाए नहीं और हमसे हर चीज़ शेयर कर सकें।
0: सही बात है, बिल्कुल। तो वरना बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन हम अब हमारे बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं एक प्यारे से गीत का।

0: हमारे अपने व्यवहार से ही हो सकती है। और जो ये एक हमारे लिए भी चुनौती है क्योंकि हमारे खुद के धैर्य की ये परीक्षा है। तो उम्मीद है आज की इस सारी बातचीत को हमारी सखियां समझ गई होंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल समझ गए होंगे। और अब जो कहने का मतलब है वो मैं समझ गई कि आप ये कहना चाह रही हो कि अगर हम कहीं बाहर भी जाए ना तो हम गर्व से कह सके इट्स माय फैमिली।

0: तो वरना हमने बहुत सारी बातें करी हैं बच्चों से, युवा बच्चों की, सबकी, लेकिन मुझे जहाँ तक ये समझ में आया कि एक परिवार परिवार तब बनता है जब हम सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी आवश्यकताओं को, उनके व्यवहार को समझना होगा, उनकी बात को सुनना होगा, उनके साथ तुलना नहीं करनी होगी। और अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके साथ बातचीत करके, संवाद बना के उनका विश्वास स्थापित करना होगा। तभी जाके अगर हम उनको समय दे पाएंगे फैमिली के अंदर, तो हम अच्छे से अपने परिवार की नींव रख पाएंगे।
1: बिल्कुल, बच्चे हमारा भविष्य भविष्य हैं, और उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने की शुरुआत हमारे अपने घर से और

0: सचियों, आज के दिन हम याद कर रहे हैं एक अत्यंत लोकप्रिय अभिनेता, सफल निर्देशक और समर्पित समाज सेवी जिनकी आज जयंती है। हम बात कर रहे हैं आज सुनील दत्त जी की।
1: भारत विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और सुनील दत्त ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत 1955 में की और उनकी जो मतलब शीघ्र ही उन्हें हिंदी सिनेमा के प्रमुख अभिनेता में भी शामिल कर लिया गया। उनकी प्रमुख फिल्में थी मदर इंडिया, सुजाता, मुझे जीने दो, पड़ोसन और वक्त।
0: बिल्कुल, और उनकी अभिनय की प्रतिभा, सादगी और प्रभावशाली व्यक्तित्व से उन्होंने दर्शकों के बीच में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। और फिल्म मदर इंडिया के दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस से हुई, जिनसे विवाह के बाद में उनकी जोड़ी को सिनेमा के अंदर सबसे सम्मानित जोड़ी में गिना जाता रहा। और सुनील दत्त जी का भारतीय सिनेमा और समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा जो सहयोग रहा है, वो सदैव सम्मान के साथ याद किए जाते रहेंगे।

0: तो सखियों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज HPT पर हमारे साथ थे विक्रम सिंह भाटी, फारूक अहमद शेख, कंट्रोल रूम से हमारा साथ दिया दिलीप सिंह परमार ने, और कंसोल से प्यारे प्यारे गीतों को आप तक पहुंचाया कपिल ने, और कार्यक्रम की परिकल्पना की मनीष जी सोलंकी ने, और प्रस्तुति थी राजेश लामरोड़ की। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मैं वंदना,
1: और मैं स्वप्नीला,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारीवाटी का। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी और एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया हिंदी समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने

0: रावण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना

0: स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंद्र अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया

0: है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
1: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। यह मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉ मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका के सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। ये सबसे पहला गीत रजिया सुल्तान फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, जानिसार अख्तर के बोल और खय्याम की तर्ज़।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार को गुलजार के बोल थे और खय्याम की तर्ज थी। फिल्म का नाम था थोड़ी सी बेवफाई। आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं नूरी फिल्म में लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को, जा निसार अख्तर के बोल और खय्याम की तर्ज़।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को। निदा फाजली के बोल थे और खयाम की तर्ज थी। फिल्म का नाम था ना खुदा। और आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं बाजार फिल्म में लता मंगेशकर को। मीर तकी मीर के बोल हैं और खयाम की तर्ज़।

और श्रोताओं, ये है आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आशा भोसले और अनवर की आवाज़ें, निदा फाजली के बोल, खयाम की तर्ज, फिल्म का नाम आहिस्ता आहिस्ता।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 3 बजे हैं। आज की पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय शाम की 5 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी के साथ आरंभ होती है।

0: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जगह पे ट्यून इन किया है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी, जहाँ मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर डॉली। और आज यहाँ मेरे साथ है
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आज की रेडियो दोस्त और होस्ट विनीता। वैसे दोस्तों, हमें पता है कि सुबह से लेकर शाम तक जो है एनर्जी आपकी ख़त्म हो चुकी होगी, ऑफिस का वर्कलोड और इतना सारा काम। लेकिन कोई बात नहीं, आज की जो प्लेलिस्ट हम लेकर आए हैं आपके लिए, उससे एनर्जी फिर से आ जाएगी और आप अपने आप को फिर से फ्रेश फील करेंगे। तो क्यों ना डॉली, आज का ये पहला गाना जो है चला दिया जाए।
0: बिल्कुल।

0: बैक टू युवानी दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम दो रेडियो बडीज आ चुके हैं आपका आज का ये दिन सैटरडे वीकेंड बहुत ही बढ़िया बनाने के लिए।
1: जी हाँ दोस्तों, और वीकेंड की बात की है डॉली तुमने, तो अभी जो है काफ़ी लोगों के जो है ना वेकेशंस चल रहे हैं ना, और हम अपने आसपास देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है बाहर वीकेंड्स पे वेकेशंस पे बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अलग अलग जगह जो है इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे गेम्स वगैरह या फिर अपनी हॉबीज़ को जो है पहचान रहे हैं और उन हॉबीज़ पे जो है काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हम देखते हैं कि अभी भी घर में हैं और प्लानिंग ही कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम जाएं जाएं जाएं, लेकिन उनके जो ये डेली रूटीन है, स्केड्यूल है, उनके पीछे वो जा ही नहीं पा रहे हैं।
0: बिल्कुल सोचते हैं कि हमारे तो ये काम ही ख़त्म नहीं थे और बाकी दोस्त वगैरह उनको देखो बढ़िया घूमने गए हैं, बढ़िया मज़े कर रहे हैं।
1: सोचते भी हैं ये देखकर कि अरे यार ये लोग जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए, और जी भी जलता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत जलन नहीं होती, लेकिन अपने काम से हट ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में तुम क्या कहना चाहोगी?
0: मेरा तो यही कहना है कि देखो ज़िंदगी में अगर हमें मज़े करने ना, और मज़े की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मज़ा किसी जगह में नहीं होता है, मज़ा एक्चुअली लोगों में होता है। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हाल फिलहाल आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त जिनसे आप आज अभी मिल सकते हैं, आप उनसे मिले, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और साथ में दुखी होए।
1: और वो तो है ही, और सही कहा तुमने, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस खुद के माइंड को जो है वो मतलब खुद को पहचानने की जरूरत है, और जिस टाइम में आप जी रहे हैं उस टाइम में रहने की जरूरत है। बहुत सारे टेंशंस, बहुत सारे जो भी काम है, आपको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए साइड में रखना आना चाहिए, और अपनी फैमिली को टाइम थोड़ा सा दे देंगे
0: बिल्कुल,
1: तो
0: फैमिली
1: आप ऐसे ही
0: को,
1: इंजॉय करने लग जाएंगे, और वो टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने
0: बिल्कुल
1: वाला है।
0: फैमिली को ही नहीं, खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है।

0: दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके सामने उबासी ले रहा हो और कुछ सेकंड्स में ही आपको भी उबासी आ जाए?
1: बिल्कुल दोस्तों, और कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हमें लगता है कि इत्तेफाक है या फिर सामने वाले को हमारी बातें बड़ी बोरिंग लग रही हैं, इसलिए शायद उसको नींद आने लगी है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है।
0: और अगर साइंटिस्ट की अपन बात करें तो साइंटिस्ट भी आज भी इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पाते।
1: बिल्कुल, लेकिन कई रिसर्च स्टडीज कहती है कि कंटेजियस यॉनिंग यानी कि उबासी लेना दूसरों को उबासी लेते देखकर हमें भी उबासी आने लगती है, हमारे दिमाग में एक कनेक्शन सा जुड़ जाता है, तब जाके हमारे साथ ऐसा होता है। हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स भी होते हैं, उनको शायद मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है, तो वो जब कनेक्ट करते हैं आपस में तो अननोइंगली हम सामने वाले को कॉपी करने लगते हैं।
0: और अब मैंने बार बार हम लोगों ने जो उबासी का जिक्र किया है, तो अगर आपको उबासी आती है तो आप खुद को अकेला ना समझे, क्योंकि ये सबके साथ होता है। क्यों रवि?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सबके साथ होता है, हमारा जो ब्रेन है उस चीज़ को कॉपी करने लगता है, तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, और ये ना समझे कि हमारी बातें सुन के सामने वाला बोर हो रहा है।
0: हाँ, फिर तो मुझे भी उबासी आ गई।
1: तो चलो इसी के चलते ये गाना सुन लेते हैं।

0: वैसे डॉली, अभी इस ट्रैक से पहले हम जो है उबासी की बातें कर रहे थे,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल, लेकिन लगता है विनीता अब हमें चाय की बातें शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि नींद बड़ी आने लगी है और आजकल तो गर्मियों के दिन चल रहे हैं और दिन में दोपहर वाली नींद बहुत ही शानदार होती है वो नींद, तो इसी के चलते थोड़ी चाय पे बातें हो जाए।
0: बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, कहते हैं कि हिंदुस्तान में दो लोग अजनबी हो सकते हैं, लेकिन एक कप चाय उन्हें दोस्त बना सकती है। आज बात करते हैं चाय और उनसे जुड़ी यादों की।
1: बिल्कुल, चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है दोस्तों, अगर हम बात करें चाय की तो सुबह की शुरुआत चाय से,
0: एग्जाम की तैयारी के बीच चाय,
1: ऑफिस ब्रेक में चाय,
0: बारिश और पकौड़ों के साथ चाय।
1: दोस्तों की लंबी लंबी बातों के बीच
0: बिल्कुल
1: चाय।
0: दोस्तों, चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि हम सभी के इमोशंस

0: उसका एक हिस्सा है।
1: बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम होती है और हमें लगता है इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमसे तो ये काम हो ही नहीं सकता, और थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ हम बैठते हैं और एक सिप जब हम चाय का लेते हैं तब एकदम से दिमाग में बत्ती जलती है और सोल्यूशन मिल जाता है।
0: बिल्कुल। और फिलहाल जो है मुझे भी सोल्यूशन मिल चुका है डॉली की, हमारे दोस्तों के हम तो जो है इनसे बातें करने में बिजी हैं, कोई बात नहीं, हमें उबासी नहीं आएगी, लेकिन हमें जो सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, उनके हाथ में अगर एक कप चाय हो और पास में पकौड़े हो और फिर ये प्लेलिस्ट हो, क्या कहना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलते हैं हमारे इसी म्यूजिकल सफर की ओर।

0: साथ होती है।
1: बिल्कुल। और आंखों से आंसू निकलना हम सबके लिए बड़ा डिफिकल्ट बना देता है प्याज को काटना।
0: तो क्या ये प्याज हमें इमोशनल कर देता है?
1: बिल्कुल नहीं, इसके पीछे भी एक साइंस छिपी हुई है विनीता। जब हम प्याज काटते हैं तो उसकी सेल्स टूट जाती है, और इन सेल्स के टूटने से एक केमिकल रिलीज होता है जो हवा में मिलकर एक गैस बनाता है। वो हमारे आंखों तक पहुंचता है और हमारी आंखों के अंदर जो नमी नमी जो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करता है, और हमारी आंखों को लगता है कि बड़ी हार्मफुल सी चीज़ है, और तो उसके रिएक्शन में हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं।
0: तो डॉली, इससे बचाव भी तो हो सकता है ना? मतलब ऐसा कुछ करने से जिससे ये आंसू ना आए और हम बड़े आराम से जो है प्याज कट कर सकें, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: प्याज काटना तो एक मतलब कट करने ही पड़ेंगे प्याज हर किसी को, क्योंकि सब्जी बनना इसके लिए पॉसिबल नहीं है इसके बिना ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला तुमने विनीता, प्याज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके कुछ सोल्यूशन है, कुछ टिप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं जिससे इस प्रोसेस में हम थोड़ा सा अच्छे से हम ये काम कर सकते हैं। और वो ये है कि हम जो तेज़ धारदार चाकू हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं। हम प्याज को फ्रिज में ठंडा करने के बाद काटने पर अगर हम यूज़ करते हैं तो वो गैस कम रिलीज होती हैं। हम फैन के सामने कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे पानी में डालकर, ये थोड़ी थोड़ी सी
0: हाँ,
1: चीज़ें हैं, इनको फॉलो करने से।
0: ये मैंने भी किया है वैसे।
1: ये तो काम करता है ना ये वाला,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ बिल्कुल करता है।
1: बिल्कुल। और प्याज वैसे तो आपको रुलाना नहीं चाहता है लेकिन रुला देता है।
0: तो दोस्तों, अगली बार किचन में प्याज काटते वक्त आंसू आए तो समझ जाइए कि आपकी आंखें अपना सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव कर चुकी है।
1: बिल्कुल।

0: वेलकम बैक टू युवानी दोस्तों. दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने की चाय की बातें और थोड़ी सी अब साइंस की बातें भी हो जाएं. तो आपने कभी सुना है कि प्याज काटते ही आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं?
1: भाई साहब, खाना बनाना हो और प्याज ना हो, ऐसा मुश्किल है। लेकिन प्याज काटते ही एक जो प्रॉब्लम है ना, वो हम सभी के

0: वेलकम बैक टू युवानी दोस्तों। दोस्तों, पूरे हफ्ते पढ़ाई, काम, डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच हम अक्सर थक जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें फिर से उठने की और फिर से वैसी ही एनर्जी फील करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी विनीता कोई शब्द होना चाहिए ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल है डॉली, ऐसे सिचुएशन के लिए भी एक वर्ड है, वो है रिजुवनेट।
0: वाओ, रिज्यूवनेट, इसका क्या मतलब होता है?
1: इसका मतलब होता है खुद को फिर से फ्रेश, एनर्जेटिक और मेंटली एक्टिव महसूस करना।
0: क्या बात है, अगर हिंदी में विनीता बात करें तो इसका मीनिंग होता है कि नव ऊर्जा प्राप्त करना, यानी कि खुद को फिर से तरोताजा करना कह सकते हैं।
1: दोस्तों, कभी कभी सिर्फ 20 मिनट की वॉक भी आपको रिजुविनेट कर सकती है।
0: बिल्कुल, अपना फेवरेट गाना सुनना, किताबों को पढ़ना या दोस्तों से बातें करना भी आपको रिजुविनेटिंग फील करवा सकता है।
1: और इसके साथ ही नेचर के बीच थोड़ा समय बिताना और माइंड को रिजुविनेट करना।
0: बिल्कुल, और हम अब कई बार होता है ना कि हम अपने मोबाइल को तो रोज़ चार्ज करते ही हैं ऑफ कोर्स, लेकिन खुद को फिर से रिचार्ज करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता।
1: बिल्कुल। वैसे आप खुद को रिजुविनेट करने के लिए क्या करती हैं डॉली? म्यूजिक, स्लीप, ट्रैवल या फिर एक्सरसाइज या फिर कुछ और?
0: मैं अपनी लिसनर्स से बातें करती हूँ और उनको प्यारे प्यारे से गाने सुनवाती
1: क्या
0: हूँ
1: बात
0: और
1: है, क्या
0: फुल
1: बात है।
0: रिजुविनेट हो जाती हूँ।
1: तो दोस्तों, इन सारी एक्टिविटीज़ का आप भी कर सकते हैं यूज़, जैसे म्यूज़िक हो या फिर आपकी कोई हॉबी हो जिसको करने से आपको अच्छा लगता हो, और इस वर्ड ऑफ द डे का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या है वर्ड ऑफ द डे?
0: वर्ड ऑफ द डे है रिजुविनेट।
1: तो इसका यूज़ भी कर सकते हैं आप। अब हम जो है आपको फ्रेश फील करवाने के लिए ये गाना सुनाते हैं।

0: वैसे ये गाना क्या कहूँ, ऐसे गाने ना चलते ही बस एंजॉय करते जाओ और गाना खत्म ना हो, ऐसा लगता है अपने आप डांस जो है आ जाता है, उसके जो हुक स्टेप्स है वो अपने आप ही पता चल जाते हैं
1: बिल्कुल,
0: और
1: अपने
0: ऐसे
1: आप ही अब
0: मतलब
1: हमारी जो बॉडी है वो मूव करने लगती है।
0: हाँ ये गाना उसी में से एक है। वैसे ये गाना सुनकर तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचती हो?
1: ये गाना सुनते ना मुझे ऐसा फील आता है कि कभी ऐसा कि मैं भी ट्रेन में हूँ और मुझे मेरा आदित्य वहां मिल जाए।
0: क्या पता मिल जाए, लेकिन कहाँ है हमारी किस्मत ऐसी?
1: सुनहरे सपने लड़कपन के
0: बिल्कुल। और दोस्तों ऐसा होता है ना, मतलब जैसे डॉली अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, खुश हो जा रही है बिना वजह के, तो ऐसा है ना हमारे साथ भी होता है कि हमारे पास कोई रीजन नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुश होते हैं, मतलब एकदम फ्रेश फील करते हैं कि हाँ ठीक है,
1: हाँ,
0: बहुत
1: तो
0: अच्छा लग रहा
1: विनीता
0: है।
1: एक बात बताओ, क्या खुश होने के लिए हर बार कोई प्रॉपर वजह होनी
0: नहीं
1: जरूरी है
0: बिल्कुल
1: क्या?
0: नहीं, लेकिन ऐसा होता है, और वजह तो अगर ना भी हो तो ढूंढ लेनी चाहिए भाई खुश होने के लिए, क्योंकि खुश तो हम खुद के लिए हो रहे हैं ना।
1: बिल्कुल, खुश होना तो वो अंदर से आता है ना वो चीज़, और खुशी के लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ थोड़ी ना होती कि ये

0: वेलकम बैक टू यू वानी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि दिन भर तो हमें कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, जैसे ही सोने जाओ, अचानक से हमारा दिमाग पता नहीं क्या बड़बड़ाने लगता है, क्या चीज़ें चलने लगती हैं। लाइफ के सारे प्लान्स, बिजनेस के आइडियाज़, कुछ कविताएं, कुछ शायरियाँ, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग, कुछ भी चलने लगता है।
1: बिल्कुल। और रात में दिमाग ना थोड़ा सा अलग काम करता है, रात को डिस्ट्रैक्शंस जो है ना कम होते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि बहुत शोर शराबा कम होता है, ट्रैफिक की नॉइस नहीं होती।

0: लोग सोने चले जाते हैं, तो बेसिकली बहुत शांति होती है।
1: और तुम्हें पता है डॉली, कुछ लोग ना क्रिएटिव हो जाते हैं. कुछ लोग रात को अननेसेसरी वरी वरीज जो है प्लान करते हैं और उसमें फंस जाते हैं.
0: बिल्कुल, देखिए जैसे कुछ लोग जैसे म्यूजिशियंस हैं या बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनका दिमाग जब रात के 3-4 बजे होते, वैसे भी कहते हैं भी ये है ना कि वो ब्रह्म मुहूर्त टाइप का, उस
1: हाँ
0: टाइप का उसमें रहता है, वो एनर्जीज नेचर में रहती है, तो हम जो भी काम उस वक्त करते हैं वो बेस्ट, अपने बेस्ट लेवल पे कर पाते हैं हम।
1: और सब लोग है ना ऐसे ये सोच में पड़ जाते हैं कि रात ऐसा सोचते हैं सुबह जो है हम जिम जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और ऐसी ही चीजें मतलब सोचते रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे और सुबह उठते.
0: वो सारा मोटिवेशन गायब हो जाता है कहीं पे, बिल्कुल।
1: अच्छा, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ
0: हाँ
1: होगा.
0: बिल्कुल, अगर 3-4 बजे की बात करें तो दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जैसे ही सुबह होती है सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है।
1: हाँ, और अपन मतलब कहीं ना अपन सारी चीज़ों से मतलब मोटिवेट, मतलब उस वक्त मोटिवेशन होता है हमारे अंदर, लेकिन जब सुबह तक उठते हैं तो ऐसा लगता है नहीं यार क्या सोच ले मैंने, मुझसे नहीं होने
0: नहीं
1: वाला
0: नहीं
1: ये
0: ये
1: ना.
0: थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सोच लिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो सारी जो प्रैक्टिकलिटी है वो हमारे दिन में जागती है और
1: हाँ
0: रात को हम बड़े क्रिएटिव, बड़े डिल्यूजनल लेवल पे चले जाते हैं।
1: इसलिए कहते भी हैं कि रात को है ना मतलब बहुत ज़्यादा शांति होती है, तो पढ़ाई वगैरह जो है अच्छे से मतलब हो सकती है, या
0: हाँ,
1: तो
0: वो लेट नाइट स्टडीज करते हैं ना बच्चे,
1: रात को या फिर सुबह जल्दी.
0: बिल्कुल। और इसका यही कंक्लूजन अभी नहीं था कि रात जो हमारा, जो हमारी लाइफ में है वो हमारे दिमाग के लिए दुश्मन भी हो सकती है और दोस्त भी हो सकती है, तो वो
1: बिल्कुल.
0: डिपेंड ये करता है कि हम उसको क्रिएटिव वर्क में लगाते हैं या ओवर थिंकिंग करने में लगाते हैं।
2: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी.

0: दोस्तों कैलाश खेर जी के ना बहुत सारे गाने हैं और सारे ही गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो गाना है ना, इसकी एक अलग ही वाइब है, अलग ही फीलिंग्स छुपी हुई है इसमें। और जो लोग गाने को फील करते हैं ना, जो लिरिक्स को फील करते हैं, उनको जो है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कितनी ज़्यादा फीलिंग्स है। क्यों डॉली?
1: बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो ये गाना है। देखो, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हर इंसान अलग होता है, सबकी लाइफ अलग है, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग है, लेकिन सबके लाइफ में जो नंबर वन प्रायोरिटी है, किसी की फैमिली है, फ्रेंड्स है, या उनके जो भी रिलेशनशिप्स है लाइफ में, किसी के लिए काम उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है।
0: हाँ
1: तो हर इंसान किसी एक चीज़ के लिए बहुत डेडिकेट होता है कि वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए।
0: कुछ भी
1: तो वो लोग इस गाने को बहुत रिलेट करते
0: बिल्कुल।
1: होंगे।
0: और इसकी गाने के लिरिक्स ही उनको ही डेडिकेट कर सकते हैं अपन, जो जो है ना, मतलब एक इंसान, एक चीज़ या फिर अपने सपने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो और उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाने को तैयार हो, है ना।
1: बिल्कुल, तभी तो इस गाने में ये लिरिक्स है कि तेरी दीवानी तेरी दीवानी।
0: फिलहाल हम युववाणी के दीवाने हो चुके हैं, तो अभी जो है वक्त जो है चला जा रहा है, चला जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सुनाते हैं ना आपको ये अगला ट्रैक।

0: कभी कभी ना दोस्तों हम सोचते हैं कि जो टाइम है, जो वक्त है, वो यहीं पर रुक जाए। और ऐसा हम सभी के साथ होता है। एक वक्त ऐसा आता है ना कि हमें सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और सोचते हैं यार ये टाइम क्यों बीत रहा है, क्यों जा रहा है ये टाइम। काश एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए हम थोड़ा सा और जी लें इस टाइम को, इस वक्त को, इस टाइम में और कुछ खुशियाँ बटोर लें, थोड़ा सा और घूम लें, थोड़ी सी और बातें कर लें, थोड़ा सा और किसी के पास बैठें, और बस ये वक्त ना जाए।
1: बिल्कुल ऐसा वैसे भी नहीं था, बहुत कम बार ऐसा होता है कि हमें ये लगे कि वक्त क्यों जा रहा है, यहीं रुक क्यों नहीं रहा है। क्योंकि वो ऐसा मोमेंट होता है कि हम फुल्ली अलाइव फील करते हैं और हम बाकी सारी चीज़ें भूल चुके
0: और
1: होते हैं।
0: उस वक्त टाइम कितना ज्यादा जल्दी, मतलब ऐसा लगता है कि यूं मिनटों में जो है टाइम जा रहा है, सेकंड्स जो है
1: और
0: ना उसकी
1: हाँ,
0: स्पीड बहुत ज्यादा हो गई
1: और
0: है ऐसे
1: अगर
0: चल।
1: यूं देखें तो एक एक मिनट भी हमें भारी लगता है।
0: हाँ और वैसे मतलब वो है कि वाइब मैच होनी चाहिए किसी के साथ, फिर तो आपको
1: बिल्कुल,
0: टाइम का पता ही नहीं चलता कब आपने 1 घंटे से 4 घंटे बिता लिए किसी के साथ।
1: क्या बात है, ऐसा बहुत कम बार होता है वैसे।
0: हाँ और वो है ना दुनिया में मतलब एक ही इंसान होता है ऐसा, एक ही इंसान होता है ऐसा जिसके साथ हमें थोड़ा अच्छा लगता है या उसके साथ हमें टाइम का पता नहीं चलता। वैसे जो अगला गाना है ना वो उन्हीं में से किसी एक इंसान के लिए।

0: तो दोस्तों, आज हमने सुने प्यारे प्यारे से गाने और की आपसे ढेर सारी बातें, जहां मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर डॉली, और आज यहां मेरे साथ थी।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट विनीता। आज के प्रोग्राम की परिकल्पना थी राजेश लामरोड की, और कंसोल पर हमारे साथ थी मोनिका। दीजिए हम दोनों रेडियो बडीज को इजाजत, फिर मिलेंगे ऐसी ही प्यारी सी शाम में और सुनाएंगे आपको चटपटे से बहुत सारे गाने। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: बारिशों के

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 30, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने

तीन विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया।

कार्यक्रम विवरण में हम आपको बताएंगे आज के शेष एवं कल के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी व उनका प्रसारण समय। तो पहले जानते हैं आज के शेष कार्यक्रमों का प्रसारण समय। रात्रि 9:30 का समय होगा कार्यक्रम राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका का। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10:00 श्रोता सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 7:00 हमेशा की तरह सजेगी चौपाल और 7:30 का समय होगा कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज का। रात्रि 8:00 का समय होगा फिल्मी नगमे सुनने का यानी फिल्म संगीत कार्यक्रम का। आज रात्रि 9:15 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत गैर फिल्मी गीत। तो श्रोताओं ये था आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का प्रसारण समय। आइए अब जानते हैं कल के कुछ मुख्य प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण समय और उनकी संक्षिप्त विवरण। कल 2:30 का समय होगा फिल्म संगीत का। कल रात्रि 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का। कल रात्रि 10:00 का समय होगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का। सुगम संगीत का आनंद लेंगे कल रात्रि 9:15 पर, सवेरे की 10:30 पर और दिन की 12:30 पर। कल सुबह 6:05 का समय होगा श्री रामचरितमानस का। सवेरे 6:15 का समय होगा कार्यक्रम वंदन का। सवेरे 7:00 श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कल सवेरे 8:30 पर सूचनाओं से भरा कार्यक्रम नमस्कार आप सुनेंगे। इसमें आप सुनेंगे गानों के साथ साथ इतिहास का में आज का दिन सप्ताह विशेष कौशल विकास योजना का लाभ एवं विशेष चर्चाएं। सवेरे 10:00 का समय होगा कार्यक्रम चुनमुन का। किसान भाइयों के लिए कृषि जानकारी आधारित कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा कल दिन में 1:05 का। कल 1:15 पर

आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी वाटिका। कल समय कल शाम 5 बजे का समय होगा कार्यक्रम युववाणी का, और इसी के साथ हमेशा की तरह शाम 7 बजे सजेगी चौपाल, और शाम 7:30 का समय होगा कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज का। तो श्रोताओं, ये था हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले शेष और मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अभी आपने सुना कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है देश का।

अभी आपने सुना समूह स्वर में देशगान। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए कुछ देर प्रतीक्षा।

0: मा उपनायक रूपेण नामांकितः अस्ति। बीसीसीआई इत्यनेन प्रथमं वारं वैभव सूर्यवंशी इत्यमुम् अपि दले समाविष्टम्, येन गत आईपीएल सत्रे सर्वाधिक धावनांकाः समर्जिताः। प्रिंस यादवोऽपि दले सम्मिलितः अस्ति। अद्य मुंबई नगरस्य बीसीसीआई मुख्यालये आयरलैंड इंग्लैंड देशयोः यात्रायै जापान देशे एशियन गेम्स क्रीडायाः कृते तथा च भारत अदलस्य श्रीलंका प्रवासस्य बहुदिवसीय क्रीडायाः कृते दलस्य निर्णयार्थं एषा सभा आयोजिता इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही समय में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से क्रमशः हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
2: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ जीवन स्तर सुधार और कारोबारी सुगमता के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, कहा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया। और राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में गिरावट, आज और कल भी आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और व्यापार सुगमता के लिए भी कई सुधारों पर मंथन किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के देश दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। श्री शर्मा धनवंतरी ओपीडी यूनिट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर मरीजों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न वार्डों के रोगियों से भी बातचीत कर इंतजामों की जानकारी ली। श्री शर्मा ने अस्पताल अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी और अधिकारियों को मरीजों के लिए जांच सुविधाएं और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमएस देश का प्रतिष्ठित अस्पताल है, यहां प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं, ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जहां भी सुधार की गुंजाइश है इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
3: यहाँ दूसरे प्रदेशों से भी पेशेंट आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हो, समय पर काम हो, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं। आज यही देखने के लिए मैं आया हूँ। मैंने मरीजों से भी बात की, तभी मरीजों ने कहा है कि समय पर हमारी जांच हो रही है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, उनका काम हो रहा है, कि हम सबका दायित्व है कि हम उन सबकी सेवा करें, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हमारी सरकार पूरी तरह से आमजन के साथ, हर व्यक्ति के साथ है, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुधार की आवश्यकता हमेशा है। जो भी होगा उसको और सुधार करके अच्छा कैसे करें, इस पर हम चर्चा करें।
2: मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश के किसान अब केवल खाद्य उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक भी हैं। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत

0: हित को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। श्री शेखावत आज जोधपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि पिछले 12 सालों में सुशासन से देश की तस्वीर बदली है।
1: यदि इस 12 साल के कालखंड को केवल एक वाक्य में समाहित करना हो तो मैं ये कहूंगा कि 12 साल पहले 2014 से पूर्व देश में जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति, व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा हो गया, वहां से निकल करके देश को हम भी विकसित हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस विश्वास से परिपूरित करके 2047 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प के रूप में उभरा, ये 12 साल की सफलता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार आज अपने पहले दौरे पर जयपुर पहुंचे। संगठन महामंत्री ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेकर संगठन के कामों और गतिविधियों की जानकारी ली। वे कल भाजपा मीडिया टीम और प्रवक्ताओं की विशेष बैठक लेंगे। उनका ये प्रवास संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रदेश में विभिन्न विभागों की लंबित और प्रक्रियाधीन भर्तियों की आज समीक्षा की। उन्होंने विभागों को भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक कार्यवाहियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आज जयपुर में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने गृह विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, पंचायती राज विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शिक्षा और चिकित्सा तथा नर्सिंग की भर्तियों की विभागवार समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और विभाग स्तर पर लंबित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत आज प्रदेश के 4 शहरों जयपुर, उदयपुर, अलवर और नाथद्वारा के स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों और नवाचारों की समीक्षा की। उन्होंने नगर निकायों के साफ सफाई के कामों को अधिक प्रभावी और जन भागीदारी आधारित बनाने के निर्देश दिए। बैठक में इन शहरों में स्वच्छता प्रबंधन, कचरा संग्रहण, अपशिष्ट प्रसंस्करण और जन जागरूकता के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने स्वच्छता व्यवस्था में ऑटोमेटेड पेनल्टी सिस्टम के नवाचार की सराहना करते हुए साफ सफाई में तकनीक के ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर जोर दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉ मांडविया ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यहां की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए युवा ऊर्जा और क्षमता को सही दिशा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: बहरोड़ में आज अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत समर कैंप का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों से अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। उन्होंने कहा कि समर कैंप से युवाओं की प्रतिभा को पहचानने का भी अवसर मिलता है।
3: हम सबको इससे बहुत

0: कुछ सीखने को मिलता है, हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी हमारे क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करें। इसमें बहुत सारा जो हिडन टैलेंट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो निकल कर बाहर आए। पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। योगा, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, फिटनेस, डाइट, इन सब चीजों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है इस पूरे कैंप में।
1: फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत कल लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया जाएगा। बाड़मेर में पुलिस की ओर से साइकिल रैली निकाली जाएगी। वहीं पाली में साइकिल रैली के जरिए लोगों को नियमित व्यायाम करने के लिए जागरूक किया जाएगा। चूरू जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों में खेजड़ी वाटिकाएं विकसित की गई हैं। राज्य वृक्ष और थार कल्प वृक्ष मानी जाने वाली खेजड़ी के संरक्षण के प्रयास के तहत ये पहल की गई है। वन विभाग ने एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी का चयन कर करीब 1.5 करोड़ खेजड़ी पौध तैयार की है। हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि जल्द ही इनका वितरण भी शुरू किया जाएगा।
2: राज्य वृक्ष खेजड़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चूरू जिले को एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी वृक्ष का चयन वन विभाग ने कर लिया है, जिसके तहत जिले में 5 तहसील मुख्यालयों पर खेजड़ी के वृक्ष के लिए वाटिका तैयार कर ली गई है, जिसमें 1,52,00,000 खेजड़ी के पौधे तैयार कर लिए गए हैं, जिनको आगामी दिनों में विभिन्न संस्थाओं व विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
1: राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इससे कई शहरों का दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और तपिश झेल रहे लोगों को बदले मौसम से काफी राहत मिली है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में तेज गर्मी का असर बना हुआ है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 25 जिलों में आंधी और बरसात के आसार हैं। राज्य के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियां आज और कल कई हिस्सों में जारी रह सकती हैं। वहीं 8 जून से एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने और हीट वेव चलने की चेतावनी बताई गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। मुंबई में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया की अध्यक्षता में भारतीय टीम की चयन समिति की बैठक के बाद टीम का ऐलान किया गया। जापान में होने वाले एशियाई खेलों और भारत के श्रीलंका दौरे के लिए भी टीम का चयन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ जीवन स्तर सुधार और कारोबारी सुगमता के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया। और राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में गिरावट, आज और कल भी आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से नागौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्यामलाल ने तैयार किया है। राज्य के उत्तर पश्चिमी मारवाड़ क्षेत्र में स्थित जिला नागौर 7 जिलों से घिरा हुआ है। महाभारत काल में इसे जंगला देश के नाम से जाना जाता था। नागौर खींवसर और कुचामन के किले के साथ ही मकराने के मार्बल के लिए ये जिला अपनी अलग पहचान रखता है। रामदेव पशु मेले और वीर तेजाजी मेले में भाग लेने के लिए देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। नागौर जिले की चिट्ठी में आज कई मंत्रियों के दौरे और सामाजिक तथा विकास से जुड़े समाचार शामिल हैं। सबसे पहले बात केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की। केंद्रीय मंत्री बीते दिनों नागौर आए और उन्होंने मेड़ता सिटी में आयोजित राव दूधा प्रतिमा का अनावरण समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने राव दूधा की वीरता, न्याय

0: प्रियता और नारी सम्मान के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। रक्षा मंत्री ने मेड़ता के मीरा महोत्सव के लिए केंद्र सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां रखी गई। इस अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। जगह जगह पौधरोपण किया गया। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। इससे एक दिन पहले वन विभाग की ओर से नागौर में लवकुश वाटिका से रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस जवानों, विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट सहित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ। इस अभियान की शुरुआत नागौर के जड़ा तालाब के पूजन के साथ हुई। इस दौरान पौधे लगाए गए और जल संरक्षण का संदेश दिया गया। अभियान के दौरान 12 दिन तक अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से लोगों को अभियान से जोड़ा गया। इस दौरान जगह जगह साफ सफाई की गई और जल संरचनाओं की मरम्मत के कार्य हुए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने अभियान के तहत नागौर के प्रताप सागर तालाब की पाल पर जल पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। श्री चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न विभागों की योजनाओं तथा विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जिले के ग्रामीण इलाकों में सड़क तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 62 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। जिला परिषद सभागार में बीते दिनों जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। बैठक में सांसद हनुमान बेनीवाल और राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की गुणवत्ता, बिजली, पानी और सड़क निर्माण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। जिले में जनगणना 2027 के तहत प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण का काम कर रहे हैं। इससे पहले 1 मई से 15 मई तक स्वयं गणना का काम किया गया। इसके लिए प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को कार्मिकों के साथ स्वयं गणना सुनिश्चित करने और हर कर्मचारी को कम से कम 10 अन्य परिवारों को प्रेरित करने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया गया ग्राम रथ अभियान ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का प्रभावी माध्यम बना। अभियान के दौरान अधिकारियों ने योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी। जिले में 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीके लगवाए गए। इस राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत जिला अस्पताल सहित विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव और टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूक करना था। नागौर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सलाहकार परिषद सागर जीवन स्तर माय सुधार और कारोबारी सुगमता राज जतन रबारा माय चर्चा कीनी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा एसएमएस अस्पताल रो चकदौरो कीनो कहो स्वास्थ्य सेवा ने मजबूत बनावन सारू सगला जरूरी जतन करिया जावेला। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया नौजवाना ने विकसित भारत रो सपनो साचो करण वाली ताकत बताया। राज्य में चौमासाओ पहली रही हलचल रे कारण घनखर ठोड़ा पारो उतरियो काल ताई आंधी बारिश रो दौर चाल तो रहवन रा आसार। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हमारी आर्थिक सलाहकार परिषद सागे मीटिंग कीनी वे दुनिया में चाल रही

0: प्रेरणा देवन वाली ताकत बताया है। वह नई दिल्ली में राखी जिया मेरा भारत युवा सम्मेलन में बोल रहा है। डॉक्टर मांडविया कहो कि भारत दुनिया रा सब नौजवान देशों में शामिल है, जठे करीब 65% आबादी 35 साल कम उम्र रा लोगां री है। वह कहो कि सरकार विकसित भारत बनावण और नौजवाना री ताकत और बूता न सही दिशा देवण सारू लगातार कोशिश कर रही है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ए देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: अलवर सांसद खेल उत्सव रा तहत बहरोड़ माए आज समर कैंप शुरू हो। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री और अलवर रा सांसद भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सागर इनरी शुरुआत कीनी। ए मौके दिया कुमारी कहो के खेलाओं अनुशासन टीम भावना और अगुवाई करण रा बूता रो विकास वह है। उप मुख्यमंत्री कहो के समर कैंप मोटियारा री प्रतिभा री पहचान रो मौको ही मिले है।
2: हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी हमारे क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करें। इसमें बहुत सारा जो हिडन टैलेंट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो निकल कर बाहर आए। पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। योगा, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, फिटनेस, डाइट, इन सब चीजों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है इस पूरे कैंप में।
0: फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल अभियान रातेत काल स्वास्थ्य रो ध्यान रखन रा बारा माय जाग जगावन सारू खास कार्यक्रम रख्या जावेला। बाड़मेर माय पुलिस री ओर साइकिल रैली निकाली जावेला। पाली माय साइकिल रैली रे जरिए रोजिना कसरत करण जुड़ी जाग जगाई जावेला। राज्य वृक्ष और थार कल्प वृक्ष कहो जावन वालो खेजड़ी रा रूखड़ा न बचावन री कोशिशां रातेत चूरू जिलारी न्यारी न्यारी ग्राम पंचायता माए खेजड़ी वाटिका विकसित करी ची है। वन विभाग एक जिला एक वनस्पति रातेत खेजड़ी रा करीब 1.5 करोड़ पौधा तैयार कीना है। माना खबर नवीस बतायो के ए पौधा बांटन रो काम बेगोई शुरू करियो जावेला।
3: राज्य वृक्ष खेजड़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चूरू जिले को एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी वृक्ष का चयन वन विभाग ने कर लिया है, जिसके तहत जिले में 5 तहसील मुख्यालयों पर खेजड़ी के वृक्ष के लिए वाटिका तैयार कर ली गई है, जिसमें 1,52,00,000 खेजड़ी के पौधे तैयार कर लिए गए हैं, जिनको आगामी दिनों में विभिन्न संस्थाओं व विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: अरब मौसम राज्य में चौमासाओं पहली री हलचल बीच घनखर ठोड़ा पारो 5 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है। कई शहरा में दिन रा बगत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस नीचे उतर गयो है। हालांकि राज्य रा आतुणी हल्का माए कठे कठे जोरदार तावड़ो पड़ रियो है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर माए पारो 40 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। मौसम विभाग रे मुजब आज प्रदेश रा 25 जिला माए आंधी बारिश रा आसार है। आंधी बारिश आज और काल कई हल्का माए चालती रहवन री संभावना है। महकमो 8 जून उजू गर्मी रो असर बधवा सागे लू बाजन सारू चेतायो है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई इंग्लैंड और आयरलैंड सागर टी20 मुकाबला सारू भारत री टीम रो ऐलान कर दिनो है। श्रेयस अय्यर ने टीम रा कप्तान और तिलक वर्मा ने उप कप्तान बनाई किया है। 15 साल रा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने पहली दफा भारत री टीम में शामिल करी चियो है। वैभव इस साल री आईपीएल होड़ में सब 72 रन बनाया है। नौजवान खिलाड़ी प्रिंस यादव नई टीम में शामिल करी चिया है। जापान माय फेवन वाला एशियाई खेलना और भारत रा श्रीलंका दौरा सारोई टीम चुनी ची। भारत और अफगानिस्तान री क्रिकेट टीम बीच ई सीरीज रा आज शुरू हुआ। एकला टेस्ट मैच माय भारत पहली पारी माय 368 रन बना लेना है। अरवाना 3 बल्लेबाज आउट हुआ। कप्तान शुभमन गिल 103 रन बनार खेल रहा है। ऋषभ पंत 50 रन बनार वारो साथ दे रहा है। इनु पहली केएल राहुल 100, साई सुदर्शन 81 और यशस्वी जायसवाल 24 रन मनार आउट हुआ। राजस्थान माए श्री गंगानगर रा मानव सुथार ई पहली दफा भारत री टीम माए शामिल करण सा गए ई मैच माए खेल रहा है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक

0: सलाहकार परिषद सागर जीवन स्तर माय सुधार और कारोबारी सुगमता रा जतन रे बारा माय चर्चा कीनी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा SMS अस्पताल रो औचक दौरो कीनो। कहो स्वास्थ्य सेवा ने मजबूत बनावन सारू सगला जरूरी जतन करिया जावेला। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया नौजवाना ने विकसित भारत रो सपनो साचो करन वाली ताकत बताया। और राज्य में चौमासाओं पहली री हलचल रे कारण घन खर ठोड़ा पारो उतरियो। काल ताई आंधी बारिश रो दौर चाल तो रहवन रा आसार। इंसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे हैं। अब समय है कार्यक्रम चौपाल का।

0: गुरविंदर जी कई हाल चाल है सा?
1: हाल चाल बहुत बढ़िया है यार। देखो के काले रज को दिन नहीं 5 जून वो पूरी दुनिया रे मायने विश्व पर्यावरण दिवस रे रूप में मनाई जे।
0: बिल्कुल।
1: और जो बात पर्यावरण री वे उन आवरण री वे जो कोई मानव सभ्यता ने जिंदो राख रही और आज तक विकास आपने अठे पुगा है तो कटे न कटे आपन या नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इन पर्यावरण रो जो है हास इन तरह नहीं करा जिन तरह लाल 100-150 साल में आप कर रही है।
0: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, पर्यावरण री बात है, परी प्लस आवरण यानी कि आपा ने चारों तरफ जो आवरण है यानी कि मनुष्य ने जीवित रहे उनके सारू जिन आवरण की आवश्यकता है उन्हें सहेज न राखनो, उन्हें व्यवस्थित राखनो, उन्हें जो है क्षति नहीं पहुंचानी, हाँ आपानो फर्ज बने गुरविंदर जी। और लाला 150 साल मायने जो आपको मनुष्य खासकर जो मनुष्य प्रजाति धरती माते लाखों करोड़ों तरह रा जीव जंतु जिनावर पक्षी सब है पर भाई लोग कोई धरती ने या धरती रे पर्यावरण ने इतो नुकसान नहीं पहुंचाए हुए जितो मनुष्य नाम री जो प्रजाति है वो पहुंचाए हुए।
1: किरण जी देखो के अरबों खरबों रा जीव वे जीव इवोल्यूट हुए अपने आप में बदलाव लावे उन प्रकृति रे हिसाब जिन तरह री जिन नेचर री है उन तरह रे वो जीव इवोल्यूट हो न आज तक पहुंची। अगर जीवारी अध्ययन करा तो में आपन लागे के भी मगर मच्छर को सांप है नी वे आपरे शरीर में बहुत कम बदलाव करिया है मतलब कम इवोल्यू है और बाकी अनुकूलन सिद्धांत रे मुजब जक्का जक्का जीव जक्का जक्का जंतु इन प्रकृति रे या उन वातावरण रे अनुरूप नहीं ढल पाया वे स्वतः ही लुप्त हो गया। एक मिनक है जो इन इवोल्यूशन रे विरुद्ध जान इन प्रकृति ने आपरी तरह बनानी चाहे या आप चाहे जीव इन प्रकृति ने ढालनी चाहे।
0: बिल्कुल।
1: अब ईरो कहीं हुई और तो हमें मिन की हमजे।
0: बिल्कुल साहब गुरविंदर जी, देखो कि प्रकृति ने जद आपा आपरे अनुरूप ढालनी चाहवा गुरविंदर जी और वा भी अगर भाई लोग उनमें आपरो स्वार्थ नहीं है और आप जो प्रकृति री एक जो तरीको है उनने साथ है आपा चाला जद तो प्रकृति ने नुकसान नहीं है पर आपा देख रहे हाँ कि मनुष्य आपरे लालच में पैसो कमाउन री होड में या फिर खुदरी जो है अति महत्वाकांक्षा है उन्हें पूरे करने चक्कर में पर्यावरण रे प्रत्येक क्षेत्र मायने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए हुए आपरी हवा आपरो पानी सब कुछ दूषित वे चुका है और अठा तक की जो चारों तरफ आपरे जो वायुमंडल रा जो स्तर है वहां में तक छेद वेगा है और अबे आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो गर्मी रो जो कहर है वो बढ़तो जा रही है इतो उनालो आपरे चरम सीमा माते आएगी आपने सहन करनी नहीं आ रही है।
1: बिल्कुल जकी धरती रे चारों ओर पैरा बैंगनी किरण आपने अटे नहीं पुगण दे ओजोन जकी परत है उरे मायने भी छिद्र जका है ठिंडा वैज्ञानिक उरे अनुमान लगायो है और कठे न कठे आपानी इन मानव सभ्यतारी आकारस्तानी है। किरण जी एक दड़ी है गोल नुमा पृथ्वी है इरे मायने इतर पे पानी 30 पे धरा धरती है तो इन दड़ी रे मायने आपा गैस ही निकाल रिया हाँ इन आपा तेल ही निकाल रिया हाँ पानी रा लाखों करोड़ों

0: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, जद बात आपा पर्यावरण ने नुकसान पहुंचाउन री करा तो साथे साथे ओ विचार करनो बहुत जरूरी है कि इन नुकसान ने आपा की कर रोक सक। भाई लोग अबे जो है अपने चेतन रो बखत आएगो है, अबे इतो टाइम नहीं रियो है कि आपा आउन वाला 100 साल तक और इन्हीं प्रकार से जो है प्रकृति ने नुकसान पहुंचावा, क्योंकि इरा रौद्र रूप आपने देखने ने मिलियो। प्रकृति जितो आपनो सहयोग कर सकती करियो, धरती जितो आपनो सहयोग कर सकती करियो, परंतु मनुष्य रो जो लालच है इनमु सब निचोड़ लियो। और अभी परिणाम वह रहा है कि कटे आंधी तूफान आ रहा है, कटे भूकंप आ रहा है, कटे जलजला आ रहा है, कटे आग लाग रही है, और इन तरह हिमालय जो है आपरा ग्लेशियर मेल्ट वे रहा है। तो तमाम प्रकार री आपदावा जो है अपने माथा रे माथे खड़ी है। अबे चेतन रो बखत है भाई लेगा। भाई लोगा इरा दो तीन छोटा बहुत सरल सा उपाय आपा एक सामान्य नागरिक वे उन्डे तक आपा वो कर सका कि पहलो तो है कि पेड़ काटा नहीं और ज्यादा ज्यादा आपा वृक्ष लगावा, वृक्ष यानी कि पौधा लगावा और वहां ने बड़ा करा। जितनी हरियाली आप रे आसपास वेला, जितनी हरियाली आप रे धरती माते वेला, उतो ही जो है गैसा रो प्रभाव कम वेला। इरे साथे साथे प्रदूषण फैलानो, गंदगी फैलानो और इको जो प्लास्टिक है जो लगातार आप रे पर्यावरण ने बहुत ज्यादा नुकसान कर रियो है, और इन सु बचनो आपने बहुत जरूरी है। वो जो हल्को प्लास्टिक है और न तो भाई लोग गले न इरो कुछ उपयोग वे, और धरती रे माथे पड़ियो जो है सालों तक धरती रे गड़ा रे जो सांस रून तो वे जो रून तो रहे वे, और इरा जो नुकसान है वे आपने दिन प्रतिदिन देखने मिल रहा है।
1: किरण जी, आज विज्ञान और तरक्की और विकास रे महीने आपा इन पर्यावरण संरक्षण री बात करा के अगर पेड़ नहीं रहा तो मानव सभ्यता भी नहीं रहे, और वो भी इन धरा यानी जोधपुर नगरी में आप बात कह रही है तो 300 साल पहला इन्हीं जोधपुर शहर रे महीने खेजड़ली गाँव में पेड़ रे खातिर नर और नारी मतलब उठे रहा लोग जो कहे वो बलिदान दियो, और ये रो आह्वान भी एक महिला करियो अमृता देवी के सिर साठे रूक रहे तो सस्तो जान की, यानी आप रो अगर बलिदान हो जावे और एक पेड़ बच जावे तो वो बलिदान व्यर्थ नहीं जावे ला, आवनाली पीढ़ी ने वो सबक सीख देला। आ धरती जटे पेड़ रे खातिर लोग बलिदान दियो, और वही 300 साल पहला कटे कल कारखाना हान कटे धुआं, लेकिन उन टाइम भी लोग सोची की आप प्रकृति है जके रे आपने आवास दियो है, आप आवास जो है ये अगर गलत फायदो उठायो तो आप प्रकृति आपा बदलो ले लेला। आज भी टाइम है कि आपा सचेत हो जावा, जटे कटे भी आप रो घर परिवार है वो मैं कोशिश करा कि भी एक तो दरखत ने नहीं काटा, चाहे किनी कितनी इमरजेंसी पड़ जा। हमें तो सरकार भी देखो एडा कड़ा नियम बनाया है कि मान लो कटे कोई सोलर प्लांट लगा रही हो है या कोई पेड़ काटने की जरूरत है तो कोशिश आ करे कि उन पेड़ ने जड़ समेत खोदन दूजी जगह लगा दो।
0: बिल्कुल,
1: और ये मैं दक्षिण भारत रो जका राज्य है वे बड़ा अग्रणीय वे पेड़ जो है उन्हें जड़ों का आटन दूजी के लगा दे।
0: बिल्कुल,
1: तो देखो कल्पना करो किरण जी एक दरखत 10-20 साल पन पे ना पाऊंगे ने एक घंटे में काट।
0: बिल्कुल,
1: तो ये नुकसान तो आपा नहीं भुगतना पड़ी, जितना आउन वाली जकी आप पीढ़ी है नी उन्हें आपने सचेत करना पड़ी कि भाई ओ प्लास्टिक नहीं है, ओ प्लास्टिक एक जहर है, इन धरती ने वो बंजर बना रही है, और सरकार लगातार इमें देखो के चेतावनी देवे बात भी हम जावे कि प्लास्टिक भाई यूज मत करो है नी, घरों कपड़े री थैली लेन जाओ, दुकान वाला नहीं कह बैठे कागज री थैली दो, ऐसे सब प्रयास करिए रे बावजूद भी प्लास्टिक थैली रो चलन लगातार चल रही है।
0: बिल्कुल, और
1: कटे लुकी छुपे चल रही है तो कटे खुले आम चल रही है, जट तक इन प्लास्टिक ने बापन वाला मिन नहीं कहवे के नहीं भाई प्लास्टिक री थैली में चाय लियाओ, प्लास्टिक री थैली में सब्जी लियाओ, तो भाई ये मैं तो गुनाहगार थे खुद हो कि धरती ने बंजर बना रिया।

0: रे मायने कोई कचरो डाले या उए रे मायने कोई नाळो खोल दे या आपरी नाली जोड़ दे तो आपाने खुद आगवान ओन ये रो विरोध करनो पड़ी। गांव रे मायने कोई जो मान लो नाडी है वा पूरी बुरीज गी है तो श्रम दान कर उन नाडी ने पाछो तैयार करो, और बावड़ी है वा कचरे में भरीज गी है तो अगर ग्रामीण युवा आगवान हो और श्रम दान कर उन भाई बावड़ी ने तैयार करे तो एक तरह वो आकर्षण रो केंद्र भी हो जा।
1: बिल्कुल सर,
0: कई अड़ी बावड़ियां है जो कहने देखने वास्ते विदेशी लोग भी आ, तो आप रो गांव रो नाम रोशन कर सको। गांव रा परंपरागत जल स्रोत है वारो संरक्षण कर।
1: बिल्कुल सर गुरुइंदर जी, रबे घड़ी रेखानी देखो।
0: बिल्कुल, आज रे कार्यक्रम रो भगत हो रही है पूरो तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आप रे साथी गुरुविंदर विश्नोई
1: और किरण ने दिराओसी
0: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सीमा डेरी।

0: अरे नवलाबा, ओ नवलाबा,
1: क्या कुना?
0: अरे बिजली खिवे है, अरे बरसात आवे, पुड़ती हो फाटक खोलो फाटक।
1: अरे ओडाड़ी और भाई आवरा मैं क्यों कर अरे क्यों कड़ा करे
2: थोड़ा आडो आंद्र को
1: अरे रमेश रे आवरा मैं क्या मारू ऊंट ना जी
2: अरे मोटरसाइकिल पंचर होड़ी मोटोड़ो आडो खोलो अरे लारे डाणे लारे बरसात आवे मामे तो दूध नहीं पड़गी भी तो ठंडो पानी
1: क्या बादल बने चार क्या छांटा पड़ी
2: नवलाबा छांटा रहा था मोटा मोटा गड़ा चीना वे नी चीना का गड़ा यहाँ लावा लारे कोई कांकरा ठोकरी हो बिजलियां बादलार अन्य देखो बरसात जातो तू नवलाबा और जो को रूड़ो आवे नी अन्नाप हवा एर अपन बो खेलडी नाडियाला रे पाल मात खेलडी बा नीची पड़गी भी
1: अरे पड़गी पाछी डू भी करो कोई हारो दो कोई कह नी कोई सांप रोप दो बात फाची है जो कह नी जरा झेल
2: ले
1: कुदरत रहा खेल है थे कुदरत रहा हाथ जड़ो करो मिनक जात करी बा कुदरत पाछो कर
2: देखो नवलाबा थे मने जिंदगी में जो को पाठ पढ़ायो हो टेमो टेम देखो मैं पौधा लायो हूँ थापने 84
1: ओ ठीक ठीक हो कर ले तो पूरा
2: 84 कह नी 84 लाख योनिया मु जद आदमी भुगत रहे बाद में मिनक जमारो मिले नी थे मन वा बात बताई जन मैं 84 पौधा लेवा नवलाबा रहा तू एक एक पौधो पूरा खेतर चारों में रोपा है
1: बिल्कुल अरे वारे वाह दिन दिन है वारे रामेश्वर रा वाह क्या नहीं क्या
2: नवलाबा अब के तो अपन गर्मी हो रही निकली हांद्रा लूरा थपेड़ा लागन डुका जड़े को ऊपर आलो है जो को थोड़ो के छांटा छड़को कर दिया
1: नव तपियो यो अरे अपन बो कहीं आ दो तो तपियो ना दो है जो को कह नहीं भाई कुदरत रो निजाम है
2: हाँ
1: कुदरत रो कहीं वे
2: निजाम
1: हाँ कानून है
2: कानून
1: के देखे कोई की चाहे तावड़ो पटकी तो हैंगर बात बरोबर पटक और ही है जो आई तो वो बरोबर आई और बरसात हो तो हैंगर बात बरोबर हुई
2: कटवे बरोबर करे दे गांव वे दूजड़ा वही को
1: भाई देखे यूं हमें गांव में मेरी मेरी जाति धर्मरा लोग है पर मैं तो भाई देखे हैंगर बात बरोबर
2: हाँ आज अटे काले बटे
1: समझे नहीं तो कुदरत रा कह नहीं भाई देखे और हमें खेती में कर तो है खाते करी
2: करी करी
1: क्या आ को नहीं भाई फलान जी 15 दिन पहला बाद जी और 5 दिन पच बाई यूं को है खेती तो कह नहीं के आप रो नियम कानून कायदो है तो ये बात है तो मैं एक तो पौधा तो लाए तो बड़ी अशो की बात करी पर बीज कटे बीज सारा लाई जाए को नहीं
2: क्यों फसल आलो बीज अपने
1: और फसल कई
2: अरे बहनी
1: तो मटेरियल बीज लाओ तो
2: देखो
1: बात करे
2: अन हुनो बाजरी ज्वार मूंग और तिल आर ये जगह अपने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में नहीं बट उन सर्टिफाइड बीज है जो को मिले आएगो
1: वाह तो ठीक करी
2: और काकड़ी मतीरा रार भी ले आएगो
1: गवार रोको करिया है
2: गवार तो घर में पड़ी हो या 84 कुंटल
1: जूनियो काम रोको दे
2: मैं लाओ
1: भाई लाओ
2: मैं तो सोचो अपन वो बकरियां भरी भी ले ले
1: अरे भाई है पर देखे के है देखे के आजकल वैज्ञानिक बने हो के वो लान पाउनो
2: बोलिया बोलिया
1: अरे देखे यूं तो भाई मेज टाबर हानी
2: हां
1: जब मैं है जो जेट में आउ तो
2: हां
1: और जेट

0: कड़ी बाजरी होती
1: होती
0: हमें कुदरत गिड़को कर दियो आगे
1: हाँ।
0: देखो हमें बाद में कभी भर है कभी हवन भर है।
1: मैं तो नवला बा बे थे मने ला बचपन में ही कहा था मैं बाबा आ जा घी की रोटी खा जा बेला थे क्या होता ने चक्कर लगाओ
0: मैं वो तो जिद करता
1: हाँ। देखे चिड़िया हिनान करे
0: अरे भाई देखे कुदरत है आप रखे जीव जिन्हें और बनाया नहीं
1: हाँ।
0: बे तो है करी पर थे चिड़िया रहे कबूड़ा रहे क्या नहीं डाव डांडे बाबत कहूँ करियो
1: मैं अपने चिड़िया कबूड़ा जिनावर खातर है जगह बे अपने चुगारो और पानी रहे जगह भर भर शिकोरा रख दिया
0: हाँ कुंडिया भर दो
1: हाँ और जगह अपने बाड़ा में कुतड़ा बे तो जगह थोड़ी कुतर बचेड़ा है नहीं बे गौशाला में टेक रूम पुगा दिए
0: अरे बात तो पुगा दी पर खेली है नहीं
1: हाँ खेली भरा दी
0: ऐसा भरन राखनी
1: हाँ।
0: दूजो यूं कहूँ रे भाई के भारत तो हमके वो तूफान यू आयो नहीं
1: हाँ।
0: जदा बा कुत्र तुम थोड़ी गिनी बचुड़ी भाई नाग दी का गौशाला में
1: नहीं नहीं बा काली जगह पड़ी ना
0: हाँ
1: बात अपन खेत में नेक दी बा खाद उजाई
0: वाकी
1: छोकी छोकी गौशाला पुगाई दी
0: थोड़ी गिनी रात भाई हाल चौमा से रखा तक
1: और कुतरु याद आयो नवला बा अपन बा भिंडगी गाय नहीं बा काल ब्याह की भी है जो को टोकड़ी लाई
0: वाह वाह की कोनी मैं उठ धाप धाप
1: हाँ मैं उठ धाप धाप रखा
0: वाह की कोनी है भाई
1: हाँ
0: के अपने तेजू जी हुआ
1: हाँ हुआ
0: वीर तेज जी
1: हाँ।
0: मैं कहूँ है के थारा नहीं आर करता पहले खुद रहता कोई खेती पाती नहीं कोई बात है जो को करता कौन कह भाई देखो राजकुमार
1: हा हाँ।
0: पर पते है जो को कह नहीं के कोई समुद्र हो कोई कह नहीं के
1: मैंने बोल दियो
0: मैंने कोनी समुद्र हो देखे सार में
1: हाँ।
0: तो भोजे इंदु जी कह हो जिद बात तो याद है
1: हाँ है हाँ
0: वो गीत होना न हम जाऊ
1: अच्छा ओ गजो गजो जेट असाड
0: रे
1: लगतो ही गाजोर सावण
0: हुणो
1: क्या उड़ाओ
0: अरे हूँ कौन मारे खून कुनिया
1: अच्छा हुणो हुणो हुणो

0: बात है,
1: देखे चाम बालो नहीं है, काम बालो है। ये बात है,
0: शब्द लागा, शब्द ये लागा है।
1: हाँ, शब्द में ताकत है। और थारे कहीं टक्की लागी नहीं लागे, हमें कौन जलमिया कौन भूत होया।
0: हाँ
1: बाबत है जी, कोई क्या नहीं बात, विगत बार बता भाई जी को मंठा पड़ जा।
0: देखो नवला बा, सबो पहली नाम है गोपीनाथ जी बाड़लो दाई, और एक भारतीय राजनीतिज्ञ स्वतंत्रता सेनानी है। और देखो के आपने जका ए गोपीनाथ जी है ना, बारो नवलाबा आज जगी जयंती है। और ए आपन काई करियो गांधीवादी सिद्धांत अनुयायी हा।
1: अरे हाँ भाई, ने तो असम में हारे।
0: हाँ
1: उठे क्या चारू मेरू अंग्रेजा ने क्या नहीं भाई, खदेड़ ने वास्ते पूरे भारत में है जो मन को कह भाई आप
0: थाने कोई ध्यान है के असम रे मैंने गुवाहाटी रे उनाला।
1: अरे मने तो बोलते हूँ देखे कई जलसा में जाओ तो बजे मैं आज गाल नहीं जाइए तो कहीं
0: मंत्र
1: था है कि प्रदेश में किया है जिको कह भाई पुगता मातबर मीन खा जिको आज सिपाही बनिया।
0: हाँ
1: तो आनी कोटि कोटि नमन है मंदिर भूल चढ़ावा कोई आने नहीं भूल सके। बड़े
0: आगलो नावे नवला बाब मास्ती वेंकटेश अयंगार। और ए है जका आज है जी की नवलाबा आरी है जी की जयंती है। और कन्नड़ भाषा रा जानिया माना साहित्यकार। और भारत रे मैंने जो साहित्य रे मैंने सब मोटो पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार वेना वो आने मिलियोड़ो है।
1: अरे भाई देखे के गुणी विद्वान मीन खा, कोई भाषा बोली में लिखी होती क्या नहीं के की तो पोती लिखन गये ही हा। तो आनी कोटी कोटी नमन है मंदरेरा फूल चलाओ भले।
0: अबे आगलो जो नाम है नी नवलाबा वो देखो के नाम है, मैं ताने पूरो पुरानो नाम बताऊं, बलराज रघुनाथ दत्त साहब।
1: ओ ठीक ठीक
0: ठीक है।
1: हाँ
0: पचे आने जो को बाद में दुनिया जगह नाम जानियो ना।
1: हाँ
0: आरो नाम है सुनील दत्त।
1: ओ हो
0: मिलियोड़ा वनी।
1: अरे घना ही मिलियोड़ा भाई।
0: आज है नी नवलाबा सुनील दत्त साहब री जयंती है।
1: ओ हो ए तो कही देखे भाई पुगता कह नी के कलाकार अदाकार।
0: हाँ ए भारतीय फिल्म रामायण बहुत ही बड़ा अभिनेता है और साथे साथे राजनेता भी है।
1: हाँ भाई ने तो कह नहीं के कहनी बम्बई ले अमृतसर तक नहीं, जब थोड़ो घो देश में खटापटी हुई जिद पाला पे
0: हाँ पैदल यात्रा।
1: हाँ हूँ हाथ गियो नहीं
0: तो नवला बात है को नहीं, मैं गियो भी टाइम आर जो को बच्चो नहीं संजय दत्त थे कह तो वो थारे गोदी माए बैठ जाए तो बचपन में
1: बैठो तो की कोनी बार घरू नरगी साहब मैंने तो भाई की कौन सुनील दत्त जी तो कह भाई कोटी कोटी नमन करण जोग है।
0: हाँ
1: कोई गीत लो है तो होना
0: बढ़िया गीत होना
1: बढ़िया होना
0: लो होना।

0: वाह भाई वाह, न्याल कर दिया
1: बड़े।
2: और देखो के आगलो जो को नाम है नवलबा और नाम है डी रामा नायडू, ठीक है। और आज है जी की आरी भी जयंती है और तेलुगु फिल्मार मैंने अभिनेता रियोड़ा और अपन जो का देखो के आंध्र प्रदेश रे मैंने प्रकाशम जिला रे मैंने आरो जन्म योड़ो है और जो को अपने बहुत ही बढ़िया फिल्मा में काम करियो और आज है जी की नवलबा आरी जयंती
0: करियो जटी छोको भाई कोटि कोटि नमन है मंदिर पूछ लावा।

0: भले
1: आगलो जगो नाम है नवलाबा गुरु बच्चन सिंह रंधावा साहब और नवलाबा आज आरो जन्मदिन है।
0: ओ रंधावा साहब
1: हाँ ए पूर्व भारतीय एथलीट हा और ऐसी खेलारे मैंने स्वर्ण पदक है जो को जीतियो।
0: ओ हो मैं जानी रंधावा साहब कोई हीरो रंधावा ना
1: नहीं हो जात है रंधावा साहब। तो नवलाबा आज आरो जन्मदिन है
0: कोटि कोटि बधाई है भगवान हजरत खेल खेलता रहे भले।
1: आगलो देखो अपन नवलाबा नाम है उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय ठीक है और आज है जगियारी जयंती है और ए भवानी मंदिर नाम री एक पुस्तक लिखी जकार मैंने देश री स्वतंत्रता खातर जको काम करियो ना वीर खातर देवी काली री उपासना मा जोर दियो।
0: भाई देखे शक्ति जटी भक्ति है भक्ति जटी शक्ति है
1: आजादी रे संघर्ष करियो वीर मैंने बहुत बड़ा क्रांति करिया।
0: अरे हाँ भाई आजादी रा सिपाही
1: हाँ
0: कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी नमन है मंदिर रा फूल चढ़ावा भले।
1: आगलो नाम है ए ओम होम ठीक है ए जगी आज आ रही है
0: अंग्रेज हा
1: अंग्रेज हा और आज आ रही जयंती है
0: कांग्रेस बनाई है
1: हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रा संस्थापक है।
0: हाँ उन टाइम कांग्रेस दूजी ही हमें कांग्रेस दूजी हो गई
1: दूजी होगी
0: हाँ वही बात देश की आजादी की बात है कांग्रेस ही
1: हाँ
0: मैं कांग्रेस है भाई दूजी है।
1: हाँ अभी थोड़ी राजनीतिक पार्टी मोटी बनी है यो।
0: तो भाई देखे घूम साथ समंदर आ गऊ जल में नटाया और जिको कह नहीं अंग्रेज होते हुए भी अंग्रेज खिलाफत है जिको आपने आप मिन भारतीय मिन कने ज्ञान दियो
1: सही है।
0: तो कोटि कोटि नमन है मंदेरा फूल चढ़ावा भले।
1: आगलो जो नाम है वो है राजेंद्र कृष्ण दुगल जगह ने दुनिया है जो राजेंद्र कृष्ण नाम जानियो है।
0: अरे गीत लिखता रे
1: हाय हागी फिल्मार मैंने बहुत ही बढ़िया गीत लिखता गीतकार कवि पटकथा लेखक हा और नवलाबा आज आ रही जयंती है।
0: ओहो तो देखे भाई जग चावा गीत लिखन गया
1: हाँ
0: तो आरो लिखियो कोई गीत मने ही हुनाई दे
1: ओलो हाजिर है।

0: तो कोटि कोटि नमन है नमंदरे रा फूल चढ़ावा भले।
1: आगलो नाम है नवलाबा अवधेश प्रताप सिंह जी और आज है जिकारी पुण्यतिथि है और भारत रमन है बहुत बड़ा राजनेता और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हुआ और भी बाद में आजादी बाद रमन है विंध्य प्रदेश रा पहला मुख्यमंत्री आर नेतृत्व में काम करियो मुख्यमंत्री रूप में।
0: तो कैप्टन आगे
1: कैप्टन
0: फौज में रिया देश री आजादी रा सिपाही बनिया और राजकाजी हमारी उतारनी कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी नमन है मंदड़े रा फूल चढ़ाओ बड़े।
1: अगलो नाम है डी देवराज उर्स और आज नवलाबारी पुण्यतिथि है और नवलाबा राजनीति की हा और कर्नाटक रे मुख्यमंत्री रूप रे मैंने दोष कार्यकाल
0: में था है देवराज जी अर्स कांग्रेस दो फाड़ हुआ।
1: अच्छा
0: जदरी बात है जो नवी कांग्रेस बनेगी आप ही ठोड़ मत सो कई काम करिया कोटी कोटी नमन है मंदड़ेरा फूल चढ़ावा और भर दे के भाई मैं एक अर्जिशी होना दे मारो जीव होर हो जा
1: बढ़िया एकदम झंझनाटालो
0: झंझनाटालो
1: लाठी नीचे रखो दे लाठी नीचे रखो
0: नीचे है भाई
1: होना होना।

प्रस्तुत है साज आवाज और अल्फाज का कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज करेंगे आक्रोश फिल्म के इस गाने के साथ, जिसे गाया है जावेद अली ने, इरशाद कामिल के बोल और प्रीतम का संगीत।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडिया वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं।

अपन संगीत में ही आगे बढ़ेंगे और अब आपको सुनवाएंगे सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म से ये गाना, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, कुमार के बोल और रोचक कोहली का संगीत।

फिल्म संगीत में ये गाना आप सुन रहे हैं जावेद बसीर की आवाज़ में। प्रसून जोशी के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत, फिल्म का नाम भाग मिल्खा भाग।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के सूर्य नगरी चैनल पर। आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आपको सुनवाते हैं फिल्म खट्टा मीठा से ये गाना, जिसे गाया है केके और सुनिधि चौहान ने, इरशाद कामिल के बोल हैं और प्रीतम का संगीत।

फिल्म संगीत का अगला गाना है गुलजार के अल्फाजों के साथ विशाल भारद्वाज का संगीत और आवाज़ें हैं राहत फ़तेह अली खान की। फिल्म का नाम है ओमकारा।

गजेंद्र वर्मा की आवाज में ये गाना आप सुनेंगे असीम अहमद अब्बासी के बोल के साथ, टेबल नंबर 21 फिल्म से।

फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश है मेट्रो इन दिनों फिल्म से। अरिजीत सिंह की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य की बोल और प्रीतम का संगीत।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए थोड़ी देर प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए

0: मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी अलोंग एंड यूनिकली ओपन बॉर्डर।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: महिला न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में।

0: आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केन्द्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुख में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों

0: से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities.

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गैर फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम है जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सूर्य नगरी चैनल पर। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं तुलसी कुमार और दर्शन रावल की आवाज़ में अगला सुगम संगीत का ये गीत।

इसी गाने के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की, आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता के एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था, लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है

0: तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नामांकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आजादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आजादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आजादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने

0: लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
1: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी को यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं डेली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लिए उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहां दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी शची रानी गुरटू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वाइट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखते कर। उसे कहा यार तुम लिखते हमारे यहाँ दिखाओ, तुम क्या कहानी लिखते, मैं देखू तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे में दिखा लिया, तो बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा क्या करेगा। तो

0: ने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने दी, उसने कहा तुम्हारी कहने ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपनी पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था। तो फिर मुझे वहां से लेटर आया, मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा। पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर वो मरे मन से वहां पहुंचा। पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वाली लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूँ लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
0: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको देख। तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को इसी को लेकर लिखना चाहते हैं तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देना, है ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखती है, औरों को भी समझने की कोशिश करती है। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका हो यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए जो नहीं चल सक रहा है, उसको चलने की मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर रहे, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप

0: उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले लिया है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नैरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मक है, जो लिखना है, उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपने चेतना में, अपने संवेदना में वो एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। जी, इसका वही महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आस पास सांस ले रही है। दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर,
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के।
3: जी,
4: उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने।
3: जी,
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है, उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था, उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था, किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
4: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम

0: आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहां पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र, तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है। और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दादा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
1: जी, अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
0: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही। आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी, वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देशभर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों, सुभद्रा कुमारी चौहान हूं
1: जी,
0: हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान
1: है
0: वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है
0: जी।
1: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से, कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूं, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया। उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है। लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है।

0: ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभा मुद्गल हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, चाहे छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूं, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना हूं। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
1: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी, सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन, वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक नहीं संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुर्डे इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट हु ट्राइज टू गिव एक्सप्रेशन टू द ब्यूटी ग्रैंडियर एंड स्वीटनेस ऑफ म्यूजिक सो एज टू टच द ह्यूमन हार्ट एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ हिज सिंगिंग। बियॉन्ड हिज वोकल प्रोविस He is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru, Pandit Ullas Kashalkar, in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapeeth, Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुर्डे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे तीन ताल में ही दो द्रुत बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर। Rishikesh begins his vocal recital with Raag Bihagda. The Vilambit composition is set to Teen Taal. This will be followed by Druta compositions in Teen Taal.

0: ये था राग बिहागड़ा.
1: That was राग बिहागड़ा.
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं. विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे. गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे.
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री. द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल. ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल.

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुले जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिसनिंग टू अ क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुर्डे इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। ही वॉज एकम्पनीड ऑन द तबला बाय आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय मकरंद खरवंडेकर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे एंड दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली।

अभी आपने सुना संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए कुछ ही देर प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। इस देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के

0: आप पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security, our long and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: Realize the full potential of our ties.
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम 500 ग्राम 1 से 5 किलो 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palm olein, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200.